0: बिनवता वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत धन्यवाद रागी भाई बलजीत सिंह जी हणा दा जिन्हां ने आप जी नूं हरी जस कीर्तन सरवण करवा के लाहे प्राप्त कराए हन। सो हुण समा है गुर इतिहास दा कथा दी हाजरी पा रहे ने सिंह साहब ज्ञानी रवेल सिंह जी दरबार साहब श्री अमृतसर साहब। सो एक संगतां नूं जरूरी बेनती है कि पाकिस्तान गुरधामां दी यात्रा जो हरेक साल दी तरह गुरमुख प्यारे भाई दविंदर सिंह जी वालों लैके जाई जाती है। सो हुण भी 26 नवंबर तो लैके 16 नवंबर तो लैके 26 नवंबर तक ये यात्रा जिहड़ी है वह जाएगी, जिहदे विच श्री ननकाणा साहिब गुरद्वारा सच्चा सौदा रोड़ी साहिब पंजा साहिब डेरा साहिब लाहौर करतारपुर साहिब गुरु की बेर माई सेवा साईं मियाँ मीर जी दरबार शाही किला होर 25+ गुरद्वारे जिन्हां दे दर्शन आप सिख संगतां नूं कराए जाणगे। सो आओ हुण कथा दी हाजरी पा रहे ने सिंह साहिब ज्ञानी रवेल सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
2: श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद रामदास अर्जन गुरु

दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरबिंद जिसमें अमृत ज्ञान है मान

पामह। कोए न जाने तुमरा अंत उचेते ऊचा, सगल समगरी तुमरा सूतर तारी तमते हो सो। तुमरी गात मित तुम्ही जानी नानक दास, तुदे आगै अरदास हमारी जियो पिंड सब। कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाउ न जाने। बोलना जी वाहिगुरु, वाहिगुरु जी एक ओंकार, श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए, प्रियंगत गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू सिमराऊं श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए, तेक बहादुर सिमरिया करन उन दयावै ताए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी पंथ दे वाली लोक प्रलोक के सहाय, अमृत के दाते सच्चे पिता जी सब थाई होए सुहाए। दसां पातशाहियां जी दे जोत ताखत चावर छतर दे मालक, सर्ब कला भरपूर जुगो जुगे अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी।

प्रभु दा नहीं हम ये मेहनत करे जिन्ने नाम दे आया गए मुशक्कत घाल गालना गाले गालना घाल गाल के कुछ मिले कुछ प्राप्त हो गए। कारण मैं फिर अर्ज करा जेड़ी चीज मुफत दे च मिल जाए बिना मेहनत दे मिल जाए मनु कदर नहीं करता होती। तो प्रभु का यह नियम परमात्मा ने खुला छोड़ देता है मनुख नु मनुख चौराहे ते खड़ा है। अगर अगे चला गया तो परमात्मा बनेगा पछड़ गया तो यह पशु बनेगा। शरीर का अंत होया तो अजे जन्म नहीं होया सज्जे चला गया तो देव बनेगा एक पवित्र रूह भटकती रहेगी। खब्बे गया तो एक मलीन रूह है इनू भूत प्रेत कहते कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गा। सुखमनी साहब छे अरब के करीब इस वक्त जमीन के उत्ते मनुख ने तो इतनिया ते रूहां समझ लेनिया चाहिए ब्रह्मंड हैं। चंगिया नू देव कहिंदे ने माड़िया नू भूत प्रेत कहिंदे ने। और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी इसका जिक्र कर दें कहूं जच गंधर्व उरग कहूं विद्याधर कहूं भय किनर पिसाच कहूं प्रेत पिसाच भूत प्रेत पिसाच। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाज। सूक्ष्म शरीर जद इस अस्थूल शरीर दे चों निकलदा है सारे संस्कार उसे दे चों दे चंगे ते माड़े उन्हें ही संस्कारां दे मुताबक अगे जन्म आउंदा है। लेकिन बहुत माड़े संस्कार ने जिवें हिटलर मोसोलिनी चंगेज खां हलाकू औरंगजेब हरनाकश इन्हां नूं छेती जन्म नहीं मिलदा। इन्ने माड़े संस्कार पत्थर दिल पत्थर दिमाग कोई बिल्कुल कसायण ते डायण मां होवे उहदे राही इन्हां दा जन्म होएगा उंज नहीं होएगा। दूसरे देव ज्ञानी सन जप करदे सन तप करदे सन परमात्मा तक नहीं पहुंच सके मुक्त नहीं हो सके। जिवें 100 मील दी वाट होवे 90 ते तय कीती सी पर शरीर दा अंत हो गया सूक्ष्म शरीर ते अस्थूल शरीर दा संबंध टुट गया तो यात्रा ते विचे रह गए। इस तरह के सूक्ष्म शरीर अति पवित्र होंदे इन्हां नूं देव कहिंदे ने इन्हां दा भी जल्दी जन्म नहीं आउंदा। क्यों? बिल्कुल देवी मां चाहीदी है पवित्र गोद चाहीदी है संस्कारां दे अनुकूल चाहीदी है तां जन्म होवेगा उंज नहीं होवेगा। यह प्रकरण अलग है किसी वक्त मैं खोलांगा अज ते जो कुछ मूल गल है वह थोड़े सामने रखा। आम साधारण मनुख 10-12-13 दिन के अंदर जन्म लै लेंदे ने कई ते इधर मरे इधर किधरे गर्भ दे प्रवेश कर गए। आम साधारण मनुख साधारण तो मुराद की ही ना देवता बन सके ना पशु बन सके ना अगे गए ना पिछे गए उत्थे ही रहे। समाज दा भय कानून दा भय गलत नहीं करते रहे बस मनुखां दी तरह जीवे अगे नहीं जा सके मौत हो गई है इन्हां दा छेती जन्म आउंदा है। आम साधारण सूक्ष्म ढांचे बड़े छेती जन्म लैंदे ने असाधारण विशेष जल्दी जन्म नहीं लैंदे। इन्हों इकबाल ते इंज कहिंदा है हजारों साल नरगिस अपनी बेनूर ही पेरोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कदी कदी मनुखी गुलिस्तान विच कुछ ऐसा फुल खिड़दा है जो मनुखता नु मुअत्तर कर देंदा है बागो बाग कर देंदा है कोई नवी क्रांति लैंदा है पर कहिंदा हजारां साल उड़ीक करनी पैंदी। बड़े लंबे समय तक ये देव उड़ीक करदे ने इस दे इको सिमरें देव याद कर दें सानू जन्म मिले पर हर गोद दे राही नहीं आना चाहते। जिमें बंजर जमीन दे गुलाब नहीं पैदा होंदा घास कंडे पैदा हो जाते हो जा गुलाब नहीं पैदा होंदा चंदन नहीं पैदा होंदा। हर गोद देवते नू जन्म नहीं दे सकते। अजोका समाजिक जीवन इतना भ्रष्ट हो गया गुस्ताखी माफ इतना मैला हो गया है। गुरु नानक देव जी महाराज एक दो शब्द उच्चारण कर रहे सामने आ गए ने हुण मैं कही

0: ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ ਪੁੱਤ ਜਿਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਧੀ ਵੀ ਜਿਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ ਇਹ ਜਿਨ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਰੰਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਧੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਣੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗ੍ਰਸਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਰੰਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਧੀਆਂ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਸਯਾਦ ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਸੁੱਚ ਬੰਨੀ ਖਾਣਾ ਖਾਜ ਅਖਾਜ ਸਰਮ ਗਈ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਤ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਏਕ ਹੈ ਅਵਰ ਨਾ ਸੱਚਾ ਵਾਲ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੰਚਲ ਅਤਿਅੰਤ ਚੰਚਲ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 80% ਤੇ ਨਗਨ ਹੋ ਗਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਰੰਨਾ ਹੋਈਆਂ ਬੋਧੀਆਂ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਸਯਾਦ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ ਸਯਾਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਇਤਨੀ ਚੰਚਲ ਉਹ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਸੁੱਚ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਸੁੱਚ ਬੰਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਜ ਅਖਾਜ ਸੁਰਮ ਗਈ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਤ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਏਕ ਹੈ ਅਵਰ ਨਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਨੋਰਾ ਦੀ ਜਨੋਰੀ ਜਿਨ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਭਾਵ ਮਾੜੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਢਾਂਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੇਵਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੇਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਵਤਾ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਾਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਈਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਵਤਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਧ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਨੇ ਗੁਸਾਖੀ ਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਉਹ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਿੱਥ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਪਤ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਇੱਕ ਕਵਾਓ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਦੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਈ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨੇ ਦੋ ਨਾਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰ ਹੈ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਪਰ ਦਰ ਐਸਾ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਸ ਇੰਨੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਾਓਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਗਾਓਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਕੁਝ ਖੜਾਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾਗੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਸੁੱਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਾਓਗੇ? ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਾਰੀਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪੱਥਰ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਚ ਲਿਆਈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਚ ਲਿਆਈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਚ ਲਿਆਈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਲਿਆਈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਚੱਲ। ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਲ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਮਕਈ ਬੋਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਣਕ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਕਈ ਬੀਜ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇ। ਕਰਮ ਬੀਜ ਨੇ ਤੇ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ। ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹ ਬੀਜ ਬੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੀਜ ਇਸਨੇ ਬੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੀਜ ਬੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਪਰਮ ਰਸ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਬੀਜ ਬੋਏ ਨੇ। ਕਰਮ ਭੂਮ ਮੈਂ ਬਹੁ ਬਹੁ ਨਾਮ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਓ, ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਪਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣੀ। ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੁਬੜ ਦੁਸ਼ਟ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਲਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਚ ਆਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੋਕੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਅਨੁਭਵ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਹੰਕਾਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਚਲੋ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗਾ ਸਕਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਇਤਨਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸਾ ਕੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ। ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਨ ਕਦੋਂ ਜਾਗੇਗਾ? ਮਨ ਸੁਣੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕੌਣ ਸੁਣੇ? ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸੁਣੇ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਸੁਣੇ। 10-10 ਹੌਰਨ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 2 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ, ਇਹ 10 ਹੌਰਨ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਸੁਣੇ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਿੰਡ ਸੁਣੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ? ਸੁਣਨਾ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ खास नुक्ते थोड़े सामने रखते हैं, इन्हों 15 मिनटों की गल पकड़ ले चाह जाए। जब मनुख बोलता है, बोलन का पुरना पैदा होता है, पवन नाभी नाल टकरांदी है। देही माठी बोले पवन, असी बोलते हैं पवन तत् करके, बोलना पवन तत् की प्रकृति है। इस वास्ते पवन नू बाकी तत्तां दे गुरु कहा। अगर मनुख बोले ना तो संबंध जुड़ते नहीं, बोल के ही संबंध टुटते हैं, बोल के ही संबंध जुड़ते हैं। टुट गई प्रीत बुर बोल, एक बुरा बोल बोलिया कई साल की दोस्ती दुश्मनी च बदल गई। गंड परीति मिठे बोल, एक मिठा बोल बोलिया उपरा मनुख अपना हो गया। मनुखी दुनिया च खेड सारी बोलां दी है, ते बोलना पवन करके। इस वास्ते सतगुरु सुनो, गुरु कहिंदे ने देही माठी बोले पवन। जैसे मन विच फुरना पैदा होंदा है बोलना, पवन नाभी नाल टकरांदी है। नाभी थोड़ी जिहा खुलदी है, जैसे खुलदी उत्थों आवाज उठती है, उस आवाज नूं कहिंदे ने परा। एक धुन ते होंदी है, उहदे च अखर नहीं होंदे, एक धुन उठती है। वह जब हिरदे तक पहुंचती है उन्हों अखर मिलते ने, फिर इन्हों कहिंदे ने पसंती। बड़े ध्यान नाल सुनना, उही आवाज जब कंठ तक पहुंचती है इन्हों कहिंदे ने मधमा। पूरा वाक बन जांदा है जो जबान ने कहना है, ते जबान बयान कर देंदी है, इन्हों कहिंदे ने बैखरी। परा पसंती मधमा बैखरी। नाभी तो आवाज कदों उठती है, जब पवन टकरांदी है। पवन कदों टकरांदी है, जब मन विच फुरना पैदा होवे बोलना है, बोलना है। पवन नाभी नाल टकरांदी है, नाभी तो धुन उठती है, हृदय तक पहुंचती है, अखर मिलते हैं। यह कम सारा तेजी नाल ऑटोमैटिक होंदा है, इनू पसंती कहिंदे ने। यह फिर कंठ तक पहुंचती है, पूरा वाक बन जाता है जो कहना, इनू मधमा कहिंदे ने। ते जबान बयान कर देंदी है, इनू बैखरी कहिंदे ने। परा पसंती मधमा बैखरी। ये जिहड़ी बैखरी बाणी है वाहेगुरु वाहेगुरु बैखरी है, हुण इहनू परा करना है। जिथों ये धुन उठी है उत्थे लै जानी है। इहनू गुरबाणी इंज कहिंदी है, उल्टी गंगा जमन मिलाओ। गंगा जिथों निकली है, जिथों जन्मी है, उल्टा के हुण इसनू उत्थे ही लै जाना है जिथों निकली है। हुण दरिया जिथों निकलिया है उसे जगह ते वापस लै जाना। अक्सर दरिया 100% करीबन पहाड़ां तो निकल देना, उचाइयां तो आंदे ने, ते दरिया नू पलटा के उत्थे ही लै जाना जिथों निकले है, कठन है, कठन। जमीन दे उत्ते मनुख इस तरह नहीं कर सकदा, होया नहीं, अज तक कामयाबी नहीं हुई, ऐसा हो नहीं सकता। जिथों गंगा निकली है गंगोत्री तो, बदरी ना रहने तो भी परे है, गालबन 32,000 फुट है एवरेस्ट जितनी ऊंचाई है। एवरेस्ट 35,000 फुट कह देंगे ने, यह जरा थोड़ी जी घट, लेकिन उस वर्ग ही है, उतनी बिखड़ी है। उत्थों निकल दी है ये गंगा, और कबीर कहते जिथों निकली है उत्थे ही लै जाने, पलटा के उत्थे ही लै जाना। ये धुन जिथों उल्ट निकली है पलटा के वापस ले जानी है। धुन जो नाभी तो उठी है, जबान दे राही प्रगट हुई है, कन्ना दे राही वापस जाएगी। सरवनन गोविंद गुण सुनो अर गाओ रसना गई। इस धुन नो जबान दे नाल बार प्रगटाना बड़ा आसान है, सारा दिन गपशप चलती रहती है। वाहेगुरु वाहेगुरु भी दो दो घंटे चलता रहता है, यह भी मैरिज कर दें। इको दफा वाहेगुरु आखण नाल मनुख वाहेगुरु का रूप हो जाता है, इको ही दफा। एक चित जाए एक छिन दे आयो, काल फास के बीच ना आयो। चलो मैं इन कह दिया, करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आख दया, एक पाप भी नहीं मिटेगा, एक दुख भी नहीं मिटेगा। एक दफा वाहेगुरु आखद्या करोड़ा पाप मिट जाते, करोड़ा दुख मिट जाते। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखना सौखा है, सौखा है, बहुत सौखा है। एक दफा वाहेगुरु आखना बहुत औखा है, बहुत औखा है। जबान बोले ते मन पूरी एकाग्रता नाल सुने, औखा है। पर करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखना है मता किधरे एक दफा वाहेगुरु कहण की जाच आ जाए। बस इन्नी गल, खेड़ एक दफा नाल बनेगी, दो दफा नाल नहीं। प्रभु दे नाम दी इतनी महिमा एक दफा नाल गल बनेगी। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमक सिमरत जित छूटे। किड़ा एक दफा जबान उच्चारण करे वाहेगुरु, उठी ते धुन ना बीत हो ते धुन वापस ना बीत तक जावे। हुण सुन के जाएंगे, मिनट थोड़े रह गए, इसे च मैं गल पूरी करा। जैसे मनुख एकाग्रता नाल सुनेगा ये धुन कन्ना दे राही वापस जाएगी, जिस रस्ते तो आई है जाएगी उसे रस्ते तो वापस। जैसे धुन कंठ तक पहुंची ऐसे मनुख नो वाहेगुरु वाहेगुरु आखण दा रस आवेगा। इदी धुन मधमा तक पहुंच गई है, ऐसे मनुख नो कहने ने वाहेगुरु एदी रसना ते वस गया। जैसे भोजन दी बुरकी मुंह च पाई स्वाद ते आ गया, पर ए भोजन अजे खून नहीं बनया, अजे नसा दे गर्दिश नहीं पिया करता, अजे कंठ तो थले ही नहीं गया, अजे मास नहीं बनया, अजे चर्बी नहीं बनया, अजे खून नहीं बनया, स्वाद ते आ गया। जिन्हों वाहेगुरु आखण दा स्वाद ही नहीं आ रहा, यकीन जानो अजे मदमा दी खेड भी नहीं बनी, अजे इंज कह लो बुरकी मुंह च भी कोई नहीं, गुस्ताखी माफ। वाहेगुरु आखण दा स्वाद आ गया, इसनों कहिंदे ने प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। जबान ते वस गया पहचान, ये वाहेगुरु कहिंदे रस नाल भर जांदा है, ये बाणी जपदा है रस नाल भर जांदा है, ये बेरसे बाणी नहीं जपदा। कारण शब्द गहरा चला जांदा है कंठ तक, इतना सुनदा अजे इतनी गहराई है। सहजे सहजे ये होर गहरा चला जाए पसंती, स्रोत इतनी गहरी हो जाए, जितनी स्रोत गहरी होवेगी उतना आनंद वधेगा, उतना अनुभव वधेगा, उतना ज्ञान वधेगा। ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनन लग पैंदा। केड़ा अनाहद नाद? जिस नाद तो सारा ब्रह्मंड पैदा होया। कीता बसाओ एको कवाओ पिस्ते होए लख दरियाओ, ऐसा मनुख अनाहद दी धुनी सुनन लग पैंदा। मैं अपनी जिंदगी च 5-7 मनुख ऐसे देखे ने जो अनाहद सुनदे सन। कल भी एक सज्जन इत्थे मैनू मिलिया, इत्थे बैठा नहीं है, मैनू इस तरह कहण लग पिया, कुछ चेहरा उसका लगदा सी, मैनू कुछ बोलां दी सच्चाई भी लगदी सी। खैर मुख्तसर मैर्ज करा, आहत जो दो चीजां दे टकराव तो पैदा हुंदा है, अनाहत जो परमात्मा तो आवाज आई है, वह आवाज जिस तो ब्रह्मंड बने है। मां बाप तो शरीर आया है, तो शरीर विच मां बाप दी अंश मौजूद है। आवाज तो शब्द तो ब्रह्मंड आया है, तो शब्द ब्रह्मंड विच मौजूद है। इस शरीर विच मां बाप दी अंश मौजूद है, क्योंकि मां बाप तो शरीर आया, मां की रकत पिता बिंदारा। शब्द तो ब्रह्मंड आया है, तो ब्रह्मंड विच शब्द मौजूद है। उस शब्द नूं अनाहद नाद कहिंदे ने, परमात्मा की आवाज कहिंदे ने। ये धुन वापस पसंती हिरदे तक पहुंच जाए, ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनदा। हुण थोड़ा जिहा पड़ाव रह गया, इत्थे मनुख बड़े तरले रहिंदा है। प्रभु तेरी आवाज ते सुनाई दे रही है, हुण तैनूं देखण दा चा है। ऐसे मनुख नूं कह देंदे ने ये दर तक पहुंच गया, क्योंकि अनाहद तो उत्पत्ति सी ना, ये दर तक पहुंच गए। इसे नूं कबीर कहिंदे दरमा दे ठांडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे, खोल के वाड़ केड़े दरवाजे। कोई बाहर दे दरवाजे नहीं, ये पसंती तक पहुंच गए, उस अवस्था का जिक्र करता है। ये अनाहद नाद सुनन लग पे, कहिंदे ने ये परमात्मा दे दर दी नौबत है। राजे महाराजे बादशाह लोग अपने दरवाजे ते सवेरे शाम नौबत वजांदे सन। हजूर साहब सवेरे शाम वजदी है, शायद आपने विचों कईयां ने दर्शन कीते हन, दो नगारची बैठे हुए शहराई वजदी है, उन्होंने नौबत वजना कहते हैं। ये लिया ख्याल संतां तो है, ब्रह्म ज्ञानियां तो, भाई परमात्मा दे दरवाजे ते नौबत वजदी है। जगमग जोत अनहद धुन गाज है, भाई साहब भाई गुरदास जी अनहद दी दोनों बजती है। ऐसा मनुख सुन लग पैंदा है, तो ऐसा मनुख दर तक पहुंच गया है, नौबत दरवाजे ते बजांदे ने बादशाह लोग नवाब लोग दरवाजे ते, हजूर साहब भी पौड़ियां दे च नौबत बजदी है दरवाजे ते दर ते। ये प्रतीक चुने आगे, जैसे धुन पसंती तक पहुंचती है ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनता है। पर ऐसा मनुख कहिंदा प्रभु तेरी आवाज ते सुनाई दे रही है, दूरों सुनाई दे रही है, हुण तेरी झलक मिले तेरे दीदार करदे आ। तां ही कबीर इत्थे प्रार्थना करदे ने अनाहद नाद तक पहुंचे है, धर्मां दे ठांडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल के वार। हे प्रभु हुण दरवाजा खोल, दर तक पहुंच गया। यदि सुरत शब्द नाल जुड़ गई वह गुरु तक पहुंच गया। गुरु तक पहुंचना बंदे दा कर्म है, फिर अगों गुरु दा कम है प्रभु तक पहुंचाना। सानू इतनी मेहनत करनी है सुरत शब्द तक पहुंचे, अनाहद नाद तक पहुंचे, अगों फिर गुरु पहुंचा देंदा है। उस अनाहद नाद नहीं दरवाजे खोल देना है। अगर इत्थे जप जारी रहे और जप घट जांदा है, क्यों? मनुख अनाहत दी धुन दे ज्यादा मस्त रहने लग पैंदा है। धुन अगर गहरी चली गई तो नाभी नाल टकराई, नाभी पूरी खुल जाएगी। जल्दी जल्दी मैं बयान करना, नाभी दो हालतों दे पूरी खुलती है। एक उदों जब आखिरी प्राण नाभी दे चो निकलदा है, आयुर्वेद आचार्य मनदे ने आखिरी प्राण नाभी दे चौंदा है। हाथ दे चो प्राण निकल गए, हाथ सुन हो गए, जबान दे चो निकल गए, जबान सुन हो गई, अखां चो निकल गए, हुण अखां नहीं देख दियां, पैरां चो प्राण निकल गए, पैर सुर हो गए, पर बंदा जे जीवदा है आखिरी प्राण नाभी दे चौंदा है। उनू कहिंदे ने आज काल खुले तेरी गांठड़ी, अज कल तेरी नाभी गंढ खुलण वाली है, खुलेगी। मौत दे समय खुलदी है, जद खुलदी है तो शरीर की हालत यह होंगी है, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ से, सियाने लोग कहते हैं गंढ खुल गए, नाभी खुल गए, आखिरी प्राण रुखसत। इहदे नाल शरीर की मौत हो जाती है, पर जैसे धुन नाभी नाल टकराती है उदों भी नाभी पूरी खुलती है। शरीर की हालत तो उही बनती है जिहड़ी मौत दे समय बनदी, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होवा से। इत्थे शरीर दी मौत नहीं आउंदी, मन दी मौत हो जांदी है। मन परमात्मा बन जांदा है, मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछा। इत्थे आके कई घबरांदे ने, उन्हां नूं इंज दिसदा है जिवें गया सी। वाकई पुराने संस्कार पुराना ढांचा, अज तक जो हजारां जन्म होए ने जिस ढंग नाल जीवें सब खत्म होंदा है। हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के पाटे कागर। वो जन्मां जन्मांतरां दे अंदर जिहड़े कागज पए सन सब पट गए। धर्म राय दर कागज फारे, जन नानक लेखा समझ, अंदर वो सारा लेखा पे है। जैसे वो फटदा है ते मनुख नूं इंज लगदा है जिवें मेरी मौत आउण लगी। कई मुड़दे ने, इस तरह मैं देखे ने, घबरा के आखिरी स्टेज तो मुड़दे ने, घबरा के भई ते मौत आउण लगी। सीसगंज साहब दे च ਇਹ ਜਦ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਬਨ ਇਹ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਹਫ਼ਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਰਨੌਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਆਇਆ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਹਿੰਦੀ, ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਜੋ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। मैं कह नहीं, मौत मन दी आनी सी, तू मौका गवा दिता, रोई भी जावे बड़ी। कहने मैं तीन दिन दी कर नहीं रही, तो रस भी नहीं है, मैं दुखी हाँ बड़ी, पर मेरी ते मौत आने लगी सी। मैं उन्हें समझाया मन दी मौत आने लगी सी। बीज जद मिटदा है तो दरख्त बन जाता है, मन जद मिटदा है तो परमात्मा बन जाता है। मिटन तू जरूर लगी सी पर परमात्मा हो जानी सी। इत्थे आके कई घबरा जाते हैं अगर पता ना हो, बोध ना होए। बोध भी होवे तां भी वो जिहड़ी हालत बनती है ना, स्याऊ होआ सेत, तन दे ते स्याही छा जांदी है, फिर चिट्ठियाई खूब उस आखिरी जप की हालत भी मन में इस तरह आंदा एक कालक जहां सामने आ जाती मनुख घबरा जाता है। अगर बोध होवे यह अभ्यासियों समझाया जाता है ताकि उस समय घबरान ना। जैसे कोई घबराया नहीं ठीक है जो कुछ होंदा है होण दो। गंढ पूरी खुल जाती है शरीर ते जिंदा रहिंदा है मन की मौत हो जाती है ऐसा मनुख फिर वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं जपदा क्यों एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुत जन्म ना आवा उदे रोम रोम दे चलता है गुरमुख रोम रोम हर दे उदी हर रोम रसना बन जाती। ऐसे सूरत दे चो कह सकदा मैं ते परमात्मा हो गया बूंद सागर हो गई सागर दे चलीन हो गई बूंद नहीं रही। गंगा उतने चिर तक गंगा है जिन्ने चिर तक सागर दे चलीन नहीं हुई। थेम उतने चिर तक थेम है जितने चिर तक सागर दे चलीन नहीं होया। दजला फरात उतने चिर तक दजला ते फरात है जितने चिर तक सागर दे चलीन नहीं होया। सतलुज ब्यास उतने चिर तक सतलुज ब्यास है जितने चिर तक सागर दे चलीन नहीं होया। सागर दे चलीन होके ब्यास भी गया सतलुज भी गया गंगा भी गई जमुना भी गई दजला भी गया फरात भी गई नील नदी भी गई थेम भी खत्म हो गया सागर ही सागर है बूंद परमात्मा हो जाती है। मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण भारत विच ऐसा दावा करते रहने कबीर ने दावा किया अब तो जाए चढ़े सिंघासन मिले हैं सारंग पानी राम कबीरा एक बहे हैं कोई न सके पछाने। इन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज इन फरमान करते ने नानक दीन भयो गोविंद सिंह ज्यों पानी संघ पानी। इस्लामी दुनिया च होया मंसूर पर इस्लाम इस नु बर्दाश्त नहीं करता। इस तरह कोई आखे मैं सच हो गया बर्दाश्त नहीं करता। जुनैद दा चेला से ए मंसूर कारा दी गल है मिस्र दा कारा। एक दिन इदी गंढ खुल गई अभ्यासी बड़ा सी सारी सारी रात अल्लाहो अल्लाहो अल्लाहो जपदा सी खेड बन गई। मुर्शद इसका कोल बैठा सी जैसे नाभी पूरी खुली ना उच्ची आवाज नाल कहन लगा अनल हक अनल हक हक कहिंदे ने सच नो मैं सच हो गया मैं सच हो गया मैं खुदा हो गया मैं राम दा रूप हो गया राम कबीरा एक बैं इंज कह उठा। इहदा जिहड़ा मुरशद सी कहन लगा अज आखे ही फिर ना आखे ठीक है अज तू सरूर च कह गया फिर ना आखे। कारण इस्लाम दे च काफर कहिंदे ने खुदा दी बराबरी करदा है पर कौन दसे हुण गंगा जब सागर च मिलेगी तो होएगी सागर। जप जप के परमात्मा दा नाम मनुख होएगा परमात्मा हर का भगत सो हर ही जिया। संत राम में भेद कछ नाई एक जन कई मैं लाख करोरी। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा। जुनेद कहने लगा तेनू पता है काफर दी सजा सजाए मौत है तो फिर ना आखे। मंसूर कहिंदा अच्छा मेरे मुर्शद नहीं आखांगा नहीं आखांगा। जुनेद कहिंदा नहीं मैं तेरे सुभा नू जानना तो खुदा दी कसम चुक नहीं कहेंगा नहीं कहेंगा। अगर कहेंगा तो सिर्फ डेरे देच मेरे आश्रम देच डेरे तो बाहर नहीं कहेंगा किधरे भी नहीं कहेंगा। हाथ जोड़ के क्योंकि मुर्शद ने कहा कसम है खुदा नहीं कहांगा नहीं कहांगा। दस बारह दिन लंघे कारा दे नवाब ने किधरे फकीरां दी रोटी आखी जिन्हों ब्रह्म भोज कहते हैं जिन्हों कहते हैं साधु संतां दा लंगर पंज प्यारियां नू लंगर छकाना जिवें साडे च मर्यादा है उन्हां दे विच ही है फकीरां नू लंगर छकाना। कारा दे जिहड़े वड्डे वड्डे फकीर सन सारियां नू दावतनामे भेजे गए और आख्या गया सारे पहुंचो अज शाम नू। अंदाजन इतिहास दे च ऐसा है 50-55 दे करीब सन। जुनैद नो भी उचेचा है दावतनामा आया भी पहुंचना चूंकि जुनैद वड्डे फकीरां जी गिणिया जांदा सी। ज्यों चल के तैयार होके चलन लगा ना ते कहन लगा बेटा मंजूर रोटी ते तू ही खानी होनी है ते हर एक ने एक एक दो दो चेले लै जाने ने मैं होर ते किसे नू नहीं लै जाना तू चल मेरे नाल चल पिया। हुण इतने सारे फकीर बैठे उनके विचकार बादशाह बैठा सी दस्तरखान एन गोल दायरा जिवें इस्लामी ढंग है सारिया दे अंदर भांडे रखे जा रहे सन सारिया दे अगों बस मैं समाप्त करदा। इतने फकीर आउण ते गल ते रब दी चलेगी ना खुदा दी चलेगी। वारी वारी सारे रब दी गल कर रहे ने पर सुनैद जद ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਵਾਰੀ ਆਈ ਜ਼ੁਨੈਦ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨ ਉਸਦਾ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਤਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮਨਸੂਰ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆਨਲ ਹੱਕ, ਆਨਲ ਹੱਕ, ਆਨਲ ਹੱਕ। ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਨਵਾਬ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਨਵਾਬ ਜ਼ੁਨੈਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਫ਼ਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ, ਇਹ ਚੇਲੇ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਾਫ਼ਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੂੰ, ਕਾਫ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਤੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ। ਮਨਸੂਰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, 15 ਦਿਨ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ, 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚਾੜੋ, ਅਤੇ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚਾੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੋ। ਬਸ ਆਖਰੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਉਦੋਂ ਜ਼ੁਨੈਦ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ 'ਚ, ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਮਨਸੂਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ, ਪਾਗਲਪਨ। ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਤਨਾ ਸਵਾਬਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਭੀੜ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ, ਸਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਮਨਸੂਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਮੁਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਕੋਲ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਨਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਕਰਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਿਉਂ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਿਉਂ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨਸੂਰ ਦੀਆਂ, ਐ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆਉਣਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਅਨਲ ਹੱਕ, ਅਨਲ ਹੱਕ, ਤੋ ਵਿਚਾਰਾ ਮਨਸੂਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘਟਨਾ ਘਟੀ, ਜ਼ੁਨੈਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਹ 'ਚ ਭਇਓ ਅਨਕਤੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਘ ਪਾਣੀ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ 'ਚ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜਿੱਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੇ, ਤਿੱਥੇ ਲਿਓ ਉਵਾਰ, ਆਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਫਲ ਸਫਲ ਬਈ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲੇ ਸਾਦਾ। ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।
1: ਬੋਲੇ ਸੋ ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਰੋਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰੋਗ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਰੋਗ ਬਣ ਕੇ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸੋਗ ਬਣ ਕੇ। ਤੋ ਕਿਆ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰੋਗ ਤੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ? ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇ, ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਇਤਨੀ ਪੀੜਾ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਤ ਗਿਰ ਪਤਿਤ ਪਾਤਾਲੰ ਜਲੰਤ ਦੇ ਦੀ ਬੈਸਾਂਤਰੇ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਪਹਾੜ ਦੀ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਤਾਂ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਗਿਰੰਤ ਗਿਰ ਪਤਿਤ ਪਾਤਾਲੰ ਜਲੰਤ ਦੇ ਦੀਪ ਬੈਸਾਂਤਰੇ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਏ ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਬਹੰਤ ਅਗਾ ਤੋਯੰਗ ਤਰੰਗੰ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਬੜੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੋਂ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੰਤ ਅਗਾਹ ਤੋਯੰ ਤਰੰਗੰ ਦੁਖੰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ ਜਨਮੰਤ ਮਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਚਿੰਤਾ, ਜਗਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾ, ਇਹ ਐਸੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੋਂ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਹੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਤਨ ਹਰ ਵਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਗਿਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਵਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਤਨ ਹੈ, ਗਿਰਾਵਟ। ਪਾਣੀ ਨਿਵਾਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਿਰ ਰਿਹਾ, ਗਿਰ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਚੜਾਈਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਔ ਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੈ ਚੜ ਰਿਹਾ ਕਬੀਰ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵੇ ਕਾਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਉਚਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵੇ ਰਾਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਸ ਤੇ ਕਾਮ ਰਸ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਨਿਵਾਣ ਹੈ, ਨਿਵਾਣ ਹੈ, ਨਿਵਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਪਤਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਰ ਲਈ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏ ਚੜਾਈਆਂ ਤੇ ਚੜਨਾ। ਜਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ, ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੜਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਵੈਮ ਭਗਵਾਨ ਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਏ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਸੋਗ ਹੈ, ਤਨ ਰੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵੀ ਹੈ, ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਫਰਾਇਡ ਜੈਸਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਲੋਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਲੋਭ ਇਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਵਾਵੇਗਾ, ਕਾਮ ਵੀ ਇਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਬਹੁਤੇ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨੀਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੇ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। दानिशमंदी नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है। ओते कह रहे ने ए भारत दे मनीष कल्पना दी दुनिया दे जी रहे ने, कल्पना दी दुनिया जी रहे ने। और कौन इना नु दसे? कहंदे ने उस दी ते कल्पना भी नहीं कीती जा सकदी जो है नहीं, जो है नहीं। अगर प्यास है तो पानी जरूर है, भुख है तो भोजन जरूर है। जीवन विच परम सुख दी जे प्यास है तो परम सुख है, परम सुख है। परम आनंद दी जे तड़प है तो फिर परम आनंद है। ओ कहंदे ने टोल टोल के खोज खोज के ऐसा देखे है, धन मिले है, संपदा मिली है, और तरह तरह दे पदार्थां दे अंबार लगे ने, सुख ते नहीं मिले है, किधरे भी नहीं मिले है। अधूरी सच्चाई ते उन्होंने भी कबूल, हुण ते मेडिकल साइंस भी कह रही है कि 60% बीमारियां साडे काबू विच नहीं है, नहीं है। मानसिक रोग विच जीवना बस यही मनुख दी जिंदगी है, और कुछ भी नहीं है। पर धन गुरु नानक देव जी महाराज कहने नहीं, एक परम जीवन है, ऐसा जीवन जेदे च जन्म दा दुख नहीं है, जेदे च मरण दा दुख नहीं है, और जिस दे च तीजा दुख बुढ़ेपे दा रोग भी नहीं है। कुछ ना समझ ऐसा कहंदे ने कि क्यों मनी है, जीवन दुख है, शरीर रोग है। चंगे भले कई स्वास्थ शरीर दिखाई देंदे ने, गुरबाणी नहीं मनदी। अगर स्वास्थ दिखाई देंदे ने तो एक दिन बुढ़ा किस तरह हो जाता है? आखिर बुढ़े होने का बीज तो इस दे अंदर पे है, तो जिड़ा बीज इस नु बुढ़ा कर सकता है उन रोग कहा जाएगा, और की आख्या जाएगा। जिड़े स्वस्थ दिखाई देंदे ने वास्तविक उन्हां दियां थोड़ी जियां बीमारियां सीमा विच ने, या औषधियां खा खा के रोग नु सीमा विच कर लैंदा है ताकि पीड़ा महसूस ना होवे, रोग ते खत्म नहीं होए। अगर रोग खत्म हो गए ने तो फिर बुढ़ा किस तरह हो सकता है? फिर बुढ़ेपा तक ऐसा रोग है, इसनु सीमित करना भी बड़ा औखा है, कठिन है। ये तो वद्दा जाएगा, वद्दा जाएगा। भारत के सारे संत कहंदे ने बुढ़ेपा स्वयं अपने आप विच एक रोग है। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पानी। बुढ़ेपा खुद एक रोग है। मन विच वासना बड़ी प्रबल है, चलिए पर चलन दी समर्था पैरां विच नहीं है। मन विच बड़ी प्रबल वासना है पदार्थां नूं भोगण दी, इंद्रियां दी सत्या है नहीं। कहंदे ने एक जवान दी पीड़ा नालों हजारां गुणा वध पीड़ा हुंदी है बुढ़े कोल। क्यों? जवान नालों हजारां गुणा वासना उसकी वध गई है, उम्र दे नाल नाल वासना वधदी है, ते उन्हां वासनावां दी पूर्ति कर सके शरीर साथ नहीं दिंदा, शरीर साथ नहीं देंदा। इस वास्ते बुढ़ा बहुत पीड़ा विच जीवदा है, बहुत पीड़ा विच जीवदा है, बड़ी मानसिक पीड़ा आउंदी है। बुढ़ेपा खुद एक रोग है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने नानक बद्धा घर तहां जिथे मिर्त न जन्म जरा। असी हुण अपना घर उत्थे बनाया जिथे जमना कोई नहीं, मरना कोई नहीं, बुढ़ेपा कोई। जन्म है तो दुख है, जीवन है तो दुख है, और मरण है तो दुख है। तो प्रश्न खड़ा होंदा है, जीवन दे होंदे होया जीवन तो छुटकारा किवें मिले? मौत दे होंदे होया मौत तो किवें बची है? और जन्म हो गया है इनू भुलाइए किस तरह, किवें भुलाइए? इना रोगां तो और में छुटकारा आवे। प्रथम चिंता तो किवें बची है? गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक श्लोक बड़ा कीमत, जिन्हों भोग समय अखंड पाठ साहब का जद या खुले पाठ का जद भोग पैंदा है, श्लोकां दी बाणी चलदी है, इस श्लोक दे आमदियां सारे ही बड़े उत्साह नाल उमंग नाल पढ़दे ने, चिंता तांकी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोए। पर जिन्ना अर्थां विच जगत इस नूं पढ़दा है, ए अर्थ नहीं ने। अज तक जिन्ना अर्थां दे जिस नूं पढ़िया जा रहा है, ए अर्थ नहीं ने। मनुख इस दे अर्थ करदा है, अनहोनी घटना घटे ते चिंता कर, भाव मौत हो गई है, अनहोनी हो गई है। कोई जवान जद बुढ़ा हो जाता है, कहिंदा मेरे नाल अनहोनी हो गई है। बीमारी चरम सीमा ते जद कोई पहुंच जाती है, तो कह देंदा मेरे नाल अनहोनी हो गई है। काटा पै गया, दिवालिया हो गया, कहिंदा मेरे नाल अनहोनी हो गई है। उस दी कर जो अनहोनी आउंदी है। श्लोक दे ए अर्थ कीते जांदे ने, ए अर्थ नहीं ने। चिंता तांकी कीजिए जो अनहोनी होए, विश्राम नाल पढ़ना पवेगा। प्रथम ये देखना पेगा चिंता किस गल दी है। चिंता दे कारण दो ने, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिदा। ये मनुख दी चाहत है, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिदा। पड़ोसी नाल होया होवे पे, मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिदा। पर अंदर चिंता बनी हुई है, किधरे हो ना जाए, किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। दूसरा, ऐसा होना ही चाहिदा है, मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी तलब है, मेरी चाहत है, मेरी ख्वाहिश है, ऐसा होना ही चाहिदा है। पर अंदर चिंता बनी हुई, मता ना होवे, मता ना होवे। चिंता दे ए दो कारण है। ऐसा नहीं होना चाहिदा, मैं नहीं चाहता। ऐसा होना ही चाहिदा है, मैं चाहना। पहले इस गल दी चिंता है, किधरे हो ना जावे, जो मैं नहीं चाहता किधरे हो ना जावे, और जो मैं चाहना ऐसा ना होवे किधरे ना होवे। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते हैं, चिंता नो एक पासे रख, जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। चिंता नो परे सुट, जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा वह नहीं होंदा। अगर एक बुढ़ा आखे कि मैं मासूम बच्चे की तरह हो जावा, यह नहीं होंदा, नहीं होगा। और एक जवान ए आखे कि मैं कदी बुढ़ा ना हुआ, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। एक बुढ़ा ए आखे मैं कदी नहीं मरा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। जो होंदा है वो होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। जन्म हो गया होना सी, मरण हो गया होना सी, नफा हो गया होना सी, नुकसान हो गया होना सी, कबूल कर दिया ही। मनुख जन्म जीवन ते मरण दी पीड़ा तो बाला तर हो जाता है। पर किवें होवे, इहदी साधना की कीती जाए, किस तरह कीती जाए। क्योंकि गल इतनी चल रही है, और धन गुरु नानक देव जी महाराज नो विश्व भर ने जिस आवाज नाल पुकारिया सी, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा। तो रोग जन्म है, रोग जीवन है, रोग मरण है, किवें छुटकारा होवे। गुरु नानक किस ढंग नाल इलाज करदे सन, किवें इलाज करदे सन। प्रथम देखना पएगा कि मनुख जिथे भी बैठा है, परिवार विच बैठा है, बाजार विच बैठा है, या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे विच बैठा है, कारोबार विच बैठा है, या वेला बैठा है, बैठा है भूतकाल दियां यादां विच, बैठा है भविष्य दी चिंता विच। ये दो बोझ इस दे दिमाग ते पए ने। मनुख हमेशा भविष्य विच जीवदा है, मनुख हमेशा भूतकाल विच जीवदा है। कहिंदे ने तन नूं भज्जण दौड़न लई अस्थान चाहिदा है, जगह ही ना होवे खुली तो तन भज दौड़ नहीं सकदा। ते मन नूं भजन दौड़न वास्ते समा चाहिदा है। मन दी भज दौड़ समय विच आउंदी है, अस्थान विच नहीं आउंदी। अस्थान विच दौड़दा है तन, समय विच दौड़दा है मन। अगर जगह ही नहीं, अस्थान नहीं, तो तन एक जगह बैठ जाएगा। अगर समय ही खो जाए तो मन मिट जाएगा, मन टिक जाएगा। सारी दुनिया विच एक गल ते पकड़ विच आ गई है, सुख उदों बनदा है, आनंद उदों बनदा है जिथे मन किसी संगीत दी धुन विच, किसी नृत्यकार दी कला विच, किसी साज दे वादन विच, आवाज विच, मधुर ध्वनि विच वक्ती तौर ते मन टिक जाए, रस्ते बन जांदा है, आनंद ते बन जांदा है, पर सदीवी टिकाऊ नहीं आउंदा। क्यों? मन भटकदा है समय विच, कि समा बहुत वड्डा है भविष्य, समा बहुत वड्डा है भूतकाल, पता नहीं कदों असी चले सी, लंबी यात्रा है, बड़ा लंबा समा, भूतकाल साडा बहुत लंबा है, माजी साडा बहुत लंबा है, ते भविष्य साडा बड़ा लंबा है, पता नहीं कदों तक असी होवांगे, असी अज दे नहीं हां, हिमालय पर्वत तो पहले दे हां, सूरज चंद तारियां तो भी पहले दे, नबूद हेच निशान हाजे जमीनो आसमां, कि शौके यादे तो आवर्द दर वजूद मरा। ए प्रभु, भाई साहब भाई नंदलाल कहंदे ने, अजे जमीन ते आसमान दा ते नामो निशान नहीं सी, मैं ते उदों दा भटक रहा, कोई अज दा? ऐसा एक सूफी संत ने भी आखे, आदम न बूदो मन बूदम, हवा न बूदो मन बूदम, ई कस न बूदो मन बूदम, मन आशके देरी नाम, ऐ खुदा कोई मैं अजदा आशक, अज दी तेरी तलाश कर रहा, अचेतपणे सुचेतपणे कदों दा मैं तेरे रस्ते ते आ, जदों तू अजे मनुख भी नहीं बनाए सन। आदम न बूदो मन बूदम, हवा न बूदो मन बूदम, अजे माया रूपी संसार भी तू नहीं बनाया सी, मैं है सी। ई कस न बूदो मन बूदम, मन आशके देरी नाम, ए आकार नहीं सी, हे निरंकार, मैं भी निराकार होके विचरदा पिया सी ते भटकदा पिया सी, मैं ते कदों दा, अज दा थोड़ी है। मन नू भटकण लई समा चाहिदा है, भूतकाल भविष्य। धर्म कहिंदा है भूतकाल ते भविष्य दियां ही जो है चिंतावां तो एक पासे हो, मन नू लिया किथे लिया, वर्तमान दिच, वर्तमान दिच, भगवान दी झलक थोड़ी बहुत जद भी मिलेगी वर्तमान दिच मिलेगी, और ओही भगवान दी झलक वर्तमान नू भी बिठा के संपूर्ण भगवान हो जाएगी, संपूर्ण परमात्मा हो जाएगी, संपूर्ण ईश्वर हो जाएगी। पर सवाल ही पैदा होंदा है भविष्य नू और भूतकाल नू किवें मिटाई है, इते हर थां ते पीछा करदा है मनुख, जिथे भी बैठा है बस इतना ही समझ लो, चाहे वह दार्शनिक है, चिंतक है, धनवान है, गुणवान है, मूर्खां च बैठा है, भविष्य की चिंता च बैठा है, राजा है, भिखारी है, भूतकाल दियां यादां विच बैठा है, क्योंकि मन नू दौड़न ते भज्जण लई समा चाहीदा है, भूतकाल बहुत लंबा है, भविष्य बहुत लंबा है, तो पहले समझिए वर्तमान किन्ना क है। वर्तमान धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, हम आदमियां एकदमी मौलत मौत न जाना, वर्तमान एकदम है, वर्तमान अज दा दिन नहीं है, वर्तमान अज दी रात नहीं है, वर्तमान एकदम है जो मेरे मुंह च है, सारिया दे मुंह च है, जिड़ा दम अजे आया नहीं वो ते मेरा भविष्य है, ते जिड़ा दम चला गया मेरे मुंह चो वो ते भूतकाल है, जो दम चला गया इन मैं खर्च नहीं कर सकता, जो दम अजे आया नहीं मैं उसनु वर्त नहीं सकता, एकदम। तो इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, एकदम विच की कर सकदे आ, एकदम विच कोई लंबी यात्रा नहीं हो सकती, एकदम विच कोई लंबा चौड़ा कारोबार नहीं खोलिया जा सकता, एकदम विच कोई उच्चा वड्डा महल नहीं खड़ा किया जा सकता, एकदम विच कोई लंबी चौड़ी विद्या नहीं हासिल की जा सकती, पर गुरु नानक कहंदे ने एकदम विच परमात्मा प्राप्त किया जा सकता है, जद भी मिलेगा एकदम विच, क्योंकि एकदम नकद है, ते धर्म दा सौदा परमात्मा दा सौदा नकदी नाल आउंदा है, नकदी नाल आउंदा है। दुनिया दे सारे महामंत्र एकदम विच पूरे हो जांदे ने, राम एकदम विच पूरा हो गया, ओम एकदम विच पूरा हो गया, अल्लाहु एकदम विच पूरा हो गया, वाहे गुरु एकदम विच पूरा हो गया, करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखण नाल एक पाप भी नहीं मिटेगा। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखण नाल एक दुख भी नहीं मिटेगा।

भविष्य खो जाएगा। वर्तमान ने भगवान नु प्रगट कर देना है। श्री कबीर कहंदे ने बेद कतेद इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र न जाए, टुकदम करारी जो करो हाजर हजूर खुदा, एकदम दे टिक जाओ खुदा हाजर नाजर है, परमात्मा हाजर नाजर है। धर्म दी सारी साधना है कि किसे तरीके नाल वर्तमान दिच आईए। बड़े बड़े दार्शनिक वर्तमान दिच नहीं जीवदे, भविष्य दियां चिंतावां दिच जीवदे ने। बड़े बड़े सियाने मनुख वर्तमान दिच नहीं आउंदे, भूतकाल दियां यादां च बैठे हुंदे ने। और एक दफा मनुख वर्तमान दिच आ जाए ते वर्तमान सिर्फ एक दम है, उस दिच आउंदियां मनुख तन ते मन तो उच्चा उठ जांदा है। तन रोग है, मन सोग है, रोग सोग तो उच्चा उठ जांदा है। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटाने, उस हरी जन दे नेड़े फिर दुख रोग सोग जन्म मरण सब मिट जांदा है। नानक बद्दा घर तहा जिथे मृत न जन्म जना। एक वर्तमान दिच आउंदियां अगला जन्म नहीं होवेगा, मरण नहीं होवेगा। और ये जड़ा जीवन कोल है इस तो मनुख उच्चा उठ जाएगा और भगवान प्रगट हो जाएगा। यही एक साधना है और यही औषधि है। यही औषधि ईशान दे भ्रमण करके धन गुरु नानक देव जी महाराज वंड दे रहे। बाबा फरीद भी कहंदे ने आज मिलावा शेख फरीद, ताकम कूंजनिया मनो मचिंदनिया। आज मिलावा ले तो आज तो मुराद की आज दा सारा दिन कता ही नहीं, आज तो मुराद वर्तमान, वर्तमान तो मुराद एकदम एकदम। भाई नंद लाल भी ऐसा कहंदे ने यकदम बखेश राना बुरदम के कीशतम, ए वाए नकदे जिंदगी राएगा गुजस्त। मैं नकद जिंदगी बर्बाद की थी, ते नकद जिंदगी की सी जिड़ा मेरे मुंह दिच दम सी, नकद सी जिड़ा दम आया नहीं उधारी सी, जिड़ा दम चला गया वो खर्च हो गया, वो ते खर्च हो गया। मेरी जिंदगी दी जेब दे सिर्फ एक कोई दम है। नकदी मेरे कोल एक कोई दम है, हर एक कोल। पर बंदा कह देंदा है एक दम दी की जिंदगी है, नहीं, एक दम दे परमात्मा मिल सकता है, एक दम दे सारा जहान मिल सकता है, एक दम दे सारी लोकाई दी प्राप्ति हो सकती है, एक दम दे परम रस मिल सकता है। पर मनुख इस एक दम नु किवें बतीत करदा है, इसे एक दम नु बतीत कर छड़दा है गुजरे हुए दमां दी याद विच, इसे एक दम नु बतीत कर छड़दा है आन वाले दमां दी चिंता च। और दम दम करके सारी जिंदगी रायगा चली जांदी है, व्यर्थ चली जांदी है। ऐ वाए नकदे जिंदगी रायगा गुयस्त। भाई साहब भाई गुरुदास जी कहंदे ने वर्तमान विच वर्तदा होवन हार सोई परवाना, संसारी ते भगत दी पहचान की, बस दो शब्दां दे पहचान, लिबास तो पहचान नहीं होवेगी भगत है संत है। सारी दुनिया दे धार्मिक लिबास अलग अलग ने, धार्मिक दिखाई दे जाना एक श्रृंगार है, धार्मिक हो जाना एक तपस्या है, मेहनत है, साधना है। किस तरह अंदाजा लगावांगे संसारी है ए भगत है। जो भूतकाल दियां यादां दे जी रहा है, भविष्य दियां चिंतावां दे जी रहा है संसारी है, पर जो वर्तमान दे टिक गया भगत है। भगवान दा रूप है उते ईश्वर दा रूप है। वर्तमान दे टिक रहे हैं होवन हार सोई परवाना, जो हो गया है ये होना ही सी, होना ही है, अनहोनी नहीं है, अनहोनी नहीं है। ठीक है जवान जैसे बुढ़ा होने लगता है एकदम ख्याल आंदा है अनहोनी होगी, अनहोनी होगी। यही कारण है कि सारे जग दसते ने, अगर 60 साल है 50 दसते ने, 50 है 40 दसते ने, 40 है 30 दसते ने। और अक्सर स्त्रियां 30 तो अग्गे जांदियां ही नहीं, उत्थे ही रुक जांदियां। कारण बुढ़ेपा अनहोनी है। कौन दसे बुढ़ेपा ते होना है, अनहोनी नहीं है। मौत ते होनी है, अनहोनी नहीं। भगत कबीर कहंदे ने पाड़ो सीखे जो हुआ तू अपने भी जान, समझ ले मेरी अर्थी उठी। ते नहीं चुकया शायद पड़ोसी ने अपने कंधियां ते

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ओए जो दिस है अंबर तारे किन ओए चीते

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे कार औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह के होर दुख हैं, इन्हां सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है के मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। ऐथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रखिया दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकते। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

जपदे रस्ता बने। गुरमुख खोज अगम है ज्यों जल अंदर मीन फिर अंदर, मच्छी चल पई रस्ता बनदा गया। इन्हें जप आरंभ कर दिता है अमृत वेले, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, कि जपना व्यर्थ नहीं जाएगा, एक तिल नहीं बनेगा ले व्यर्थ नहीं जाएगी, रास्ता बनेगा। ये गल वखरी है कि जीवन रस्ते च ही रह जाए या घर पहुंचे, जिड़े चलते पे पर रस्ते च ही रह गए, घर तक ना पहुंचे, इन्हां नूं असाधारण कहिंदे ने। ये साधारण लोग नहीं ने, असाधारण ने। ये सूक्ष्म देह ही बहुत जल्द जन्म नहीं लेंदी, ये सूक्ष्म शरीर बहुत छेती गर्भ दे प्रवेश नहीं करता। क्यों? जितनी वाट इसने तय की थी चल चल के, इतने ही संस्कारां वाली कोई मां होवे तां गर्भ दे प्रवेश करनगे, वरना नहीं। इस तरह की कोई मां होवे जिहड़े उन्हां कोल संस्कार ने चल चल के, जो उन्हां नूं अनुभव मिले है। दूसरे असाधारण कौन? जैसे 2.5 करोड़ बंदियां दा कातल है हिटलर, औरंगजेब अपने 3 भरावां नूं मार के, भतीजियां नूं मार के, अपने प्यो नूं जेल दे च पा के सिंघासन ते बैठा है। ये कम कोई वो कर सकता है जिहदे कोल दिल नहीं पत्थर होवे, दिमाग ना जड़ होवे, मनुख ना वैशी होवे, दरिंदा होवे, वो कर सकता है। भतीजियां नूं भी मार दो, भरावां नूं भी मार दो, बुढ़े प्यो नूं भी जेल दे तड़पा के मारो, वड्डी भैण जहां आरा आई उन्हों जद पता चलिया कि दारे नूं भी मार दिता है। सुनिया सी उसने पहले शुजा नूं मार दिता है, मुराद नूं मार दिता है, पर जद हुण पता चलिया दारे नूं भी मार दिता है। दारा बड़ा नेक तबीयत इंसान सी, दानी मिजाज सी, और ज्ञानी सी, शायर सी, कवि सी, विद्वान सी, सूफी फकीरां दी ज्यादा संगत विच रहिंदा सी, फकीर तबीयत इंसान सी। जहां आ रहा है वड्डी भैण इस बिरह नाल बड़ा प्यार करदी सी और बड़ियां दुआवां देंदी सी, तो खुदा दे मार्ग ते चले हैं, खुदा तेनू अपने घर तक पहुँचावे, तेनू पूरे बोध हासिल होवे। पर जद पता चलिया बड़ी बेदर्दी नाल औरंगजेब ने दारे नू भी कतल कर दिता है। रोंदी हुई आई औरंगजेब कोल, पहले तो बड़ी ताड़ना कीती, मूर्खा तू ये की कीता, मासूम बेरा, खुदा तरस बेरा, खुदा शनास जो सी, और बड़ा फैज दिल बंदा, फयाज दिल बंदा, बड़ा दानी मिजाज दा, तू उन्हों भी मार दिता है। कहने अंदर इतना जोश आया, जहां आरा ने हाथ चुक लिया औरंगजेब नो मारन वास्ते, ए तो की कीता। औरंगजेब ने उसे वक्त उदी गुत पकड़ी, घसीट के लै गया जिस कमरे दे च प्यो बंद सी, नाल दे कमरे च उन्हों बंद कीता। 7 साल बिचारी जेल दे च रही है। ये कम कोई वो कर सकता है जिहदे कोल दिल नहीं पत्थर होवे, जिहदे कोल दिमाग नहीं सिर्फ जड़ भूसा होवे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे मनुखां दा जल्दी जन्म नहीं आउंदा, हिटलर जैसियां दा जल्दी जन्म नहीं आउंदा, हर नाकस जैसियां दा जल्दी जन्म नहीं आउंदा। कितना मूड, कितना अचेत, पशुआं नूं मात कर गया, 7 साल दे प्रहलाद नूं, मासूम बच्चा है, हर नाकस कहिंदा तू जपया कर, जल हर नाकस, थल हर नाकस, ताकि तैनू वेख के होर बच्चे भी जपन, कि असी निरंकार करके दुनिया विच जाने जाइए। निरंकार होने की तौफीक मनुख नो निरंकार ने दिती है, ध्यान नाल सुनना। निरंकार होने की उमंग ते तड़प भी मनुख नो दिती है। मनुख ऐसा

बादे अनंगी अनामे समस्ते स्वरूप परभंगी परमाथे समस्ते विभूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूप नमो राज राजेश्वरंग परम रूप नमो जोग जोगेश्वरंग परम सिद्ध नमो राज राजेश्वरंग परम वृद्ध नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता आपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरंग परम जुगते नमो नित नारायण कुरूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देव सोतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो सहसहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्वंग प्रणासी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध द बुद्ध द वृद्ध करता अदो उर्द अर्दंग।

चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ते चत्र चक्र परते चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र

के सर्वत्र पावन के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजा के सर्वत्र दीन के सर्वत्र लीन के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश के सर्वत्र काल के सर्वत्र पाल के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी।

नमस्तल परनामे समस्तल परनासे अगंजुल आनामे समस्तल निवासे निरकामं विभूते समस्तल स्वरूपे को कर्मं प्रणासी सोतर्मं विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी।

दुखदार उस क्रोध पया दास काम न होई तू करता करना में नाही जाहो करी न होई बलिहारी कुदरत वसिया तेरा तन जाई लखिया रहा जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन की तीसों पार पया कहो ना।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कहे, अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमित ओज कहे जाय। कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणित जाय, त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत। तो सर्वनाम कथ कवन

ऐसे लिबास बना के ऐसे श्रृंगार करके भी तू परमात्मा पति नूं पाई नहीं चंगी नहीं लगी, परमात्मा फिर तेरे नाल प्यार नहीं है परमात्मा दा, परमात्मा होर जीव स्त्री ने प्यार करता है जिहड़ियां उस परमात्मा नूं पा गईयां हन, जिहड़े जीव स्त्रियां परमात्मा वाहिगुरू चंगीयां लगियां हन, जे वह परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू होरना नाल प्यार करता है, ए जीव स्त्री तेरे नाल

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
0: जां कॉल किरण @604581 1900।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: लाल गंडे 25 पौंड दा बैग 1798 दा, पीले गंडे 50 पौंड दा बैग 1798 दा, अते 4 पौंड धोती हुई उर्द दाल अते मूंग दाल लवो 499 दा बैग।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई है 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
2: So the Musa, baby. Yeah.
3: Mercy.

सौ साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट

0: कर्ता पुरख निरभो निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अवतारी पुरुषानु सुखे सिद्ध जगत वल्लों कुछ उपनाम मिलते ने जिन्हों तखल्लुस कहते ने, कोई खासियत देख के कोई अहमियत देख के उन्होंने नाम दिता जाता है। समुची जिंदगी मर्यादा विच बजी हुई देख के जगत दे मुंहों निकलिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जिंदगी एक खेल है तमाशा है, जन्म नफा भी खेल नुकसान भी खेल जवानी भी खेल बुढ़ेपा भी खेल। जिसने ऐसा समझिया जानिया और जीविया देशवासियों ने उसनु कहा लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। पर जिसने महसूस कीता अनुभव कीता जगत दुख है जगत रोग है जगत मिथे है जगत ते बगदे हुए हंजू ने जगत ते एक पीड़ा है एक वेदना है जो समस्त जगत दी पीड़ा नाल भर गया और बुलंद बांग कहन लगा जगत एक पीड़ा है एक दुख है एक रोग है और उस रोग दा समाधान लेके उस रोग दी औषधि लेके जिसने देश देशांतरां दा रटन कीता और रोगियां नु स्वस्थ करदा रहा समस्त दुनिया दी जबान तो ये शब्द बुलंद बांग बुलंद होया बाबा वैद रोगियां दा बाबा वैद रोगियां। ये तो ऐसा बाबा आया है जो रोगियां ले वैद है इसते कुल औषधि है। प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज दी इस गल नु समझना होवेगा जगत एक पीड़ा है तो जगत तो मुराद की लिए मनुख मनुख स्वयं एक पीड़ा है मनुख ही समस्या है। ये नहीं कि मनुख दिया समस्या माने नहीं मनुख खुद ही एक समस्या है। ऐसा है कि मनुख दिया वेदनावां ने मनुख दे दुख ने ऐसा नहीं मनुख खुद ही एक दुख है मनुख खुद ही एक पीड़ा है मनुख खुद ही एक वेदना है। जद मनुख है तो पीड़ा है मनुख है तो दुख है। और गुरु नानक इस दी शुरुआत इंज कर देने जन्म दुख है जीवन दुख है मरण दुख है सुख ते किधरे भी नहीं दिखाई देंदा। जन्म भी पीड़ा है जीवन भी पीड़ा है मरण भी पीड़ा है। एक भ्रांति है मनुखां नूं जन्म सुख है जीवन सुख है सिर्फ मौत पीड़ा है। तो जीवन भर जन्म दिन मनाना है क्योंकि जन्म सुख है जीवन दी लालसा रखनी है क्योंकि जीवन रस है मौत पीड़ा है इसनु भुलाना है मौत वेदना है इसनु गलत करना है। मौत ही दुख है ये चेते ना आवे। मनुख ने शमशान घाट भी बस्तियां तो दूर बनाए कब्रिस्तान भी शहरां तो दूर बनाए जीवदे जागदे मनुख दिखाई देन कब्रिस्तान ना दिखाई देन हसदे खिड़दे चेहरे दिखाई देन जल्दियों या लाशां ना दिखाई देन। और घर विच कोई मृत्यु हो गई है कोशिश कीती जांदी है सारियां दे अंतिश करन विच मौत बैठ जाए उस तों पहले इस नूं घरों कढ़ो, इस तों पहलों कढ़ो, जला के खाक कर दो। जीवन चेते रहे, जन्म चेते रहे, मरण भुलाओ भुलाओ। ये पहला अवतारी पुरुष रूहे जमीन ते आया, जिसने मनुखता दे सामने बुलंद वांग होके कहा, जन्म दुख है। शायद तुसी सारे दुख दा ही जन्मदिन मना रहे हो, और दुख दे जन्म दी खुशियां मनांदे हो, यहीं नच रहे हो, टप रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल बोध नहीं है, समझ नहीं है। मनुख नु दुख दी भी समझ नहीं। अगर दुख दी समझ आउंदी तो शायद उसनु ये समझ आ जांदी, जन्म दुख है, जन्म दुख है। जन्म दा बोध नहीं है, इस वास्ते दुख दा बोध नहीं है। दुख दा बोध नहीं है, इस वास्ते जन्म दा बोध नहीं है। जीवन दी लालसा है, दुख दा ज्ञान नहीं है, इस वास्ते कह सकते हैं जीवन दा भी ज्ञान नहीं। और धार्मिक दार्शनिक ऐसा कहंदे ने, जो मेरी समझ दे च नहीं ओ नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया दे ते नहीं है। होवेगा परमात्मा, होवेगा किधरे सुख, होवेगा दुख, होवेगा कलेश, पर मेरी समझ दे च नहीं तो नहीं है। जैसे पत्थर दी दुनिया च कोई कलेश नहीं है, कोई सुख नहीं है, ना सुख दा बोध, ना दुख दा बोध, ना दिन दा ज्ञान, ना रात दा ज्ञान, ना सर्दी महसूस होंदी है, ना गर्मी महसूस होंदी है। पत्थर ही सिर्फ पत्थर नहीं, बहुते दिल बहुते दिमाग मनुखां दे पत्थर ही ने, बिल्कुल पत्थर ने। अगर दुख दा बोध नहीं है और वाकई नहीं है, और सुख दा ज्ञान नहीं है और वाकई नहीं है, तो इस दिल नु क्या कहिए, इस दिमाग नु क्या आखिए, ये तो पत्थर है। जो मेरी समझ देश नहीं वो नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया देखते नहीं है, क्योंकि मैनु उसकी समझ नहीं है। जिस जिस चीज दी मैनु समझ नहीं है वो नहीं है मेरी दुनिया च। अगर परमात्मा भी मेरी समझ देश नहीं है, तो कम से कम मेरी दुनिया दे परमात्मा नहीं है। भावे होवे, भावे जगत दे च है, पर मेरी दुनिया दे च नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज बहुती मनुखता तो बिना जी रही है, और समझ नहीं तो परमात्मा नहीं, या इंज कह लईए बहुती मनुखता परमात्मा दे होंदिया होया परमात्मा तो बिना जी रही है। जैसे अंधा सूरज दे होंदे होया सूरज तो बिना जीवंदा, रोशनी ते चारों पासे फैली हुई है, प्रकाश ते डुल के पै रहा है, पर अंधा इतने प्रकाश दे होंदे होया प्रकाश तो बिना जी रहा है। परमात्मा दे होंदे होया बहुती मनुखता परमात्मा तो बिना जी रही है। एक सच्चाई है, एक हकीकत है, और इतनी भी अगर समझ आ जाए तो समझ लेना चाहिए। समझ दी दुनिया आरंभ हो गई, समझ दे मार्ग ते मनुख चल पे है। केड़ी समझ? जो मेरी समझ देश नहीं वो नहीं है, ये सब तो वड्डी समझ है। जो मेरी समझ देश नहीं, जो मेरे बोध देश नहीं वो नहीं है, ये सब तो वड्डा ज्ञान है। कहंदे ने ज्ञान दी यात्रा अज्ञान दे बोध तो शुरू होंदी है, रोशनी दी यात्रा अंधेरे दी समझ तो शुरू होंदी है। ये भी ठीक है कि अंधे नू अंधेरे दा कोई ज्ञान नहीं, जो जन्म तो अंधा है उनू अंधेरे दा कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि अंधेरे नू देखण वास्ते भी ते अखां दे च रोशनी चाहीदी है, अखां दे च नूर चाहीदा है। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਮੂਰਖਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੂਰਖਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਪ ਦੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜੈਸੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜੋ ਅੰਧਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਮੂਰਖਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਵਰਨਾ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ, ਗਲਤੀਆਂ, ਭਟਕਣ, ਪਾਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਪਾਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿਸ ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਦੀ ਤੜਪ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤੜਪ ਉਸੇ, ਪੀੜਾ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਨੰਤ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਸਕਿਆ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਖਿਜਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਸਲ ਆਦਮ ਕੀ, ਇਹ ਸਭ ਤਸਲੀਮ ਲੇਕਿਨ ਆਦਮੀ ਅਬ ਤੱਕ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਧੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ ਐਸੇ ਅੰਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਐਸੇ ਅੰਧਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ, ਰਾਤ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਾਗਣਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਭੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ, ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੌਣਾ ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਵਿਅਰਥ ਭਟਕਣਾ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਭਿਅੰਕਰ ਆਵਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੜਪਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬੇਚੈਨ ਤੇ ਵਿਆਕੁਲ ਰਹੇਗਾ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ? ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੂਰਖਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੂਰਖਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੁਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਮੂਰਖਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚੱਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਮੂਰਖਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੂਰਖਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲ ਕੇ। ਮੂਰਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਮੂਰਖਤਾ ਉਸਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੂਰਖਤਾ ਉਸਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਝਲਕ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਦਾ ਇਹੀ, ਪਾਠ ਪਠਨ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚ ਸਤਸੰਗ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਅੰਧੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏ, ਮੂਰਖਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। दूसरा अंधेरे विच चलना चलना नहीं होंदा, भटकना होंदा। रस्ता दिखाई नहीं दे रहा, मैं चल रहा, ठीक है मैं चल रहा, कना भटकना, ना मंजिल दिखाई देंदी है ना रस्ता दिखाई दे रहा। सारी जिंदगी मनुख दी किरत विच बतीत होंदी है, ना किरत दिखाई देंदी है ना किरत दा अंजाम दिखाई देंदा, ना कर्म दिखाई देंदा ना कर्म दी आखिरत दिखाई देंदी है। तो इनू करना कहोगे, नहीं ये तो भटकना है। इनू चलना आखोगे, ये तो भटकना है। हजार अंधे दूसरी समझ विच आ रहे हैं, टकरा ही जाणगे। जगत टकराव है, कौमां टकरा रही हैं, देश टकरा रहे हैं, परिवार टकरा रहे ने, व्यक्ति टकरा रहे ने, क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा है। भगत शर्मा ने मन रे संसार अंध गएरा, समस्त संसार अंधेरे विच जी रहे, अंधकार विच जी रहे, मूर्खता विच जी रहे, अचेतपणे विच जी रहे। इस वास्ते इसका सारे का सारा करना गलत है। अंधे का चलना भटकना है, मूर्ख का पूजा पाठ भी व्यर्थ है, मूर्खता विच कीता होया दान वह भी व्यर्थ है। मूर्ख दे हर कर्म दे चौं हंकार दी बू आवेगी, निरंकार दी सुगंध नहीं। मूर्ख दी हर कृत दे चौं बिल्कुल बदबो ही होवेगी, वासना दी प्रार्थना दी सुगंध नहीं होवेगी, प्रार्थना दी महक नहीं होवेगी। इस वास्ते मेरे देखे उन्ना दे चौं एक ही सुरमोर पुन है, सुचेत हो जाना, सावधान हो जाना, समझ आ जानी। एक कोई गुनाह है जो सारे गुनाहां दी जन नहीं है, एक कोई पाप है जो सारे पापां दा पितामा है, वो है अज्ञान, वो है मूढ़ता। बस इसे तो सारे गुनाह जन्म लेंदे ने, इसे तो जो है सारे पाप जन्म लेंदे ने। और ये कहण विच कोई संकोच नहीं, जो मेरी समझ विच नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जैसे नानके दादके सौरे पशुआं दे भी हैगे ने, नानी उन्हां दी भी है, सस दी उन्हां दी भी है, भैण भरा उन्हां दे भी हैं, चाचे ताए मामे मामियां मासियां उन्हां दीआं भी हैगियां ने। समझ नहीं है, समझ नहीं है। क्योंकि समझ नहीं है तो पशुआं दी दुनिया विच परिवार नहीं है, नहीं है। अगर समझ नहीं है तो फिर मनुखां दी दुनिया विच निरंकार नहीं है, नहीं है। परिवार दे होंदे आया पशु परिवार तो बिना जीवदा है, निरंकार दे होंदे आया मनुख निरंकार तो बिना जीवदा है, ईश्वर तो बिना जीवदा है, जी रहा है ईश्वर तो बिना जी रहा है। पशु जैसे भैन बिरा दे संबंधा तो बिना जी रहा है, मामे चाचे ताए ताइया दे संबंध तो बिना जी रहा है, नानके दादके सौरे होंदे होया भी उना दे बोध तो बिना जी रहा है। परमात्मा दे होंदे होया मनुख परमात्मा दे बोध तो बिना जी रहा है। शायद इस वास्ते ही गुरु नानक ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ऐलानिया कह दिता, ज्ञान ही गुरु है, गुरु ज्ञान है, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ। अंधे चान रखिए दीवे बले पचास, गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने पंजा जल दे चिराग सामने ने। अगर मनुख अंधा है तो पंजा दीवे व्यर्थ हो गए। पता नहीं मनुखता दे सामने कितने अवतार व्यर्थ हो गए ने, कितने जलदे हुए दीवे व्यर्थ हो गए ने। जलदे रहे, वंडदे रहे रोशनी, और जिंदगी दे दीवे विच वो अपना खून जलांदे रहे, अपना समा जलांदे रहे, अपनी शक्ति जलांदे रहे, और उस तो जो रोशनी पैदा होंदी रही कोशिश से उन्हें जगत नूं मिले। पर गुरु नानक कहिंदे ने अंधे चानन रखिए दीवे बले पचास जल्दे पंजा दीवे व्यर्थ ने अंधे दे सामने पत्नी मरनू नाकारा कर चुकी है, बिल्कुल नाकारा कर चुकी है। कहिंदे ने जिस क्लास दे जिस स्कूल दी क्लास दे बच्चे बहुत फेल हो जान रह जान पास ना हो सकन स्कूल दे मुंतजिम सोचदे ने टीचर बदलिए उस्ताद बदलिए अध्यापक बदलिए इतने बच्चे फेल हो जाते हैं शायद ठीक ढंग नाल पढ़ा नहीं रहा। ठीक ढंग नाल कितना भी पढ़ाया जाए अगर कोई ठीक ढंग नाल पढ़ता ही नहीं तो फिर की होगा फिर की होगा। प्रकृति अध्यापक बदल दी रही और इक्को ही श्रेणी दे सनातन मत दे चवी अवतार आए। गुरु नानक ने दस रूप धारण किए धन गुरु नानक देव जी महाराज गुरु अंगद देव जी दे रूप च गुरु अमरदास जी दे रूप च फिर गुरु रामदास जी दे रूप च फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज दे रूप च फिर छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे रूप च फिर शमा जली गुरु फिर बालक गुरु धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज दीपक लेके अगे आए फिर सच दी मशाल लेके अगे आए गुरु तेग बहादुर साहब जी फिर रोशन जमीर बनके रोशन चिराग बनके महा सूरज बनके प्रगट होए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। पर मनुखता दी दुनिया च अंधेरा ही अंधेरा अंधेरा ही अंधेरा जर्द रस्त आए ईसा आए मुहम्मद आए मूसा आए ये कहने दे कोई संकोच नहीं अरब सारा अज भी अंधेरे च है मध्य पूरज अज भी सारा अंधेरे च है अवतारा दी धरती कैलाण वादी ये हिंदुस्तान ये भारत अगले लाउत्से जैसे महान विचारक दार्शनिक ते संत चीन दी धरती ने पैदा कीते ने समस्त चीन अज भी अंधेरे च अज भी अंधेरे च सूफिया नु जन्म देन वाली ईरान दी धरती शेख सादी हाफिज मौलाना रूम शमस तवरेज और इसे तरीके दे नाल हाफिज उमर खयाम एक तो एक महान दीवा जलिया उस धरती दे च ईरान अज भी प्रबल अंधकार दे च है भटक रहे हजारां चिराग बेकार हो जाणगे उन्हां मनुखां दे सामने जो अंधे ने अंधे ने अंधे ने। ये अंधा पन केड़ी गल दा है क्या प्रकृति अंधिया नूं जन्म देंदी है नहीं किधरे हजारां बच्चियां दे चों ऐसा सी देख सकदे आ जो जन्म तो अंधा होवे प्रकृति ते सुजाकियां नूं पैदा करदी है प्रकृति ते दोष आयद नहीं कर सकदे परमात्मा ते ज्ञानियां नूं पैदा करदा है बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान गऊ दे बछड़े ने जन्म लिया थोड़ी देर बाद उठदा है और गऊ दे अस्तना दी तरफ जो है लपकदा है इस नूं ज्ञान किसने दे दिता तेरी खुराक इना अस्तना दे च है तेरा रिजक अस्तना दे च पे है ते फिर इस नूं चूंगण दा बोध किसने दे दिता ये ते सब प्रकृति दे रही है रिजक दी तलाश दा बोध परमात्मा दे रहा है राजक रहीम दी तलाश दा बोध भी राजक रहीम दे रहा है परमात्मा दे रहा है सबनों ज्ञान दे रहा है सबनों सूझ दे रहा है। पर ये अंधापन क्यों है एक ते ओ अंधा है जिसनों कह दईए जिदी अखां विच रोशनी है ही नहीं एक ओ अंधा है जो अखां खोले ही ना बस इन्हां ही अंधियां दी तादाद ज्यादा है जो दीवे दे जलदे होया अखां खोलदे ही नहीं खोलते ही नहीं, और लंबे समय तक अखां बंद करन करके अखां विच वेखण दी ताब भी गवा बैठते हैं, ताब गवा बैठते हैं, और फिर जीवन इस तरह जीवते ने बकौले धन गुरु अर्जन देव जी, जैसे उल्लू सूरज चढ़िया हुआ है, चानना है, पर उल्लू दी दुनिया ते अंधेरा है। जे उल्लू दी दुनिया विच अंधेरा है ते उस मनुख नू की आखांगे जिस दे जीवन विच अंधेरा ही अंधेरा है। कैसा ते नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आख्या है तो कहण विच कोई संकोच नहीं, उल्लू अंधेरे विच जी रहा है, अंधेरे विच जी रहा है, बहुती मनुखता अंधकार विच जी रही है, क्योंकि अंधकार विच जी रही है ते इनू उल्लू कहण विच की संकोच है। संपत दौल झूल संग झूलत माया मगन फिरत घुगना, पंजाबी विच उल्लू नू घुगू कहिंदे ने गुरु अर्जन देव जी महाराज दा वाक। संपत दौल झूल संग झूलत माया मगन फिरत घुगना, कोई परमात्मा दी समझ नहीं, अंधेरा ही जिंदगी बन गई है, अंधेरा ही आनंद बन गया, अंधेरा ही सुख बन गया। कितना तरस आएगा उस मनुख दी जिंदगी ते, भटकना ही जिसकी जिंदगी बन जाए, भटकना ही जिसकी चाल बन जाए, टकराव ही जिसका जीवन का आधार बन जाए, ते कल कलेश जिसकी जिंदगी का लक्ष्य बन जाए। कितना तरस आएगा, कितनी दया आएगी, इस दया नू हृदय विच धारण करके धन गुरु नानक देव जी महाराज सुल्तान दी धरती तो चल पे ने, औषधियां नाल भरिया होया झोला लेके अपने हृदय विच तरह तरह दी औषधि रख के, जगत एक रोग है, मनुख एक खुद समस्या है, ते सारियां समस्यावां दा समाधान लेके नौ खंड पृथ्वी दे भरमण लई चल पे ने धन गुरु नानक देव जी महाराज। जिथे जिथे औषधि कारगर साबित होई, मनुखता दी जबान चो निकलिया बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: फैमिली केयर फार्मेसी
3: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
2: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
3: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
2: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
3: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
4: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
2: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
5: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह, पंजाब दे विच जे रुपये पहुंचदे करने ने, जे रुपये बाफर हो गए तां डॉलर इत्थे पहुंचने करने ने, तां गगन सिंह 604-349-1313 24 घंटे दे विच पंजाब रुपये पहुंचणगे ते 24 घंटियां दे विच डॉलर इत्थे ले लियो। 604-349-1313 यूनिट 103-8840-120 स्ट्रीट सरी 604-349-1313 604-349-1313 गगन सिंह पंजाब फॉरेक्स, दावा ते वादा पक्का।

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, धन गुरु नानक साहब कृपालु जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिबलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। धन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिवें असी बाणी विचों धन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन कहा। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका सिर जुला जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नूं तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हठ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिवें तंदूर दे विच लकड़ां बलदियां ने। तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका जे पैरां नाल चलदियां होयां थक जावां, सिर जुला मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी भटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खडियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरां ने तन दे अंगा ने की बिगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द भी वरतने हैं कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने हैं, साच कहो सुन लेखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है, कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं इत्थो तक कि जमीन दे विच पैदा हुई फसल, जमीन दे विच पैदा हुए पौधे, जमीन दे उत्ते पैदा हुए रुख,
परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नू टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती कोई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई वारी अर्ज करना हुन्ना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगाशी बिगसै सहज सुबाही। हुण कमल दा फुल जिहड़ा है वह सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा है वह आसमान विच है। दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक इहो जी शक्ति टिका दित्ती, ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी उहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। ओह किहड़ी ताकत है, ओह किहड़ी मिकना ती शक्ति है कि जिहड़ी इस कमल दे फुल नूं चिक्कड़ विच खिड़े होए नूं पूर्ण तौर ते खिड़ा देंदी है। सिर्फ अर्ज कर रहे हां कि प्रेम भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच बहुत सोहणियां उदाहरणां कुछ दित्तियां गुरु परमेश्वर दी प्रेमा भगती दे मुतलक कि गुरु दी भगती परमात्मा दी प्रेमा भगती कैसी है। हर एक अंदर परमात्मा ने यह ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा टिका दिती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है, दोनां दी दूरी है। ना तां चकोर नूं किसे ने स्कूल विच किसे ने किसे कॉलेज विच जां किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके उहनूं सिखाया कि आओ देख रात नूं चंद्रमा निकलना है ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नूं एक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहे हां प्रेमा भगती प्रेम दी दात हर एक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नूं किसे ने तालीम नहीं दित्ती, चकोर नूं किसे ने यह पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच उह पैदा होए चंद्रमा नूं देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नाल तकी जाना है। हालां कि इथों तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई वारी चंद्रमा नूं देखना हो जांदा है, क्योंकि चकोर सारी रात जदों चंद्रमा आउंदा है आसमान ते एक टिक उहनूं नजर टिका के देख दीए, चंद्रमा जदों इह अपनी थां सारी रात बदलदा है अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदों रुख चेंज करदा है, पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी दा ते उहने इह नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लत्तां नूं अपने जिस्म नूं घुमाना है, उहदा सुभाग है। चंद्रमा जे इस पास्यों चढ़िया चढ़ते वाले पास्यों शाम नूं उहने सवेर तक लहिंदे वाले पासे आउणा है। चकोर अपने पैरां नूं सारी रात एक थां ते थिर रखेगी, सिर्फ अपनी गर्दन नूं ही चंद्रमा दे नाल मोड़ी जाए, गर्दन मोड़दी है कदी अपने पैर नहीं। इन्नी को दी सुरत इन्ना टिका कि उहनूं अपने जिस्म दा भी कोई पता नहीं, केवल ता केवल अपनी गर्दन नूं झुका के अपनी पिट ते ला लैंदी है ते कई वारी उहदी गर्दन झुकना भी उहदी मौत दा कारण बन जांदा है। पर उह किहड़ी खिच है, चकोर नूं किसे ने तालीम नहीं दित्ती, चकोर नूं किसे ने पढ़ाया नहीं, चकोर लई कोई विद्या दा साधन नहीं, पर परमात्मा ने चकोर दे अंदर चंद्रमा दे प्रति एक खिच पैदा कीती, जिस खिच नूं जे किते मनुख समझे उसे खिच नूं ही प्रेम किया गया है। हुण उह दिस नहीं रही पर उहदा चंद्रमा नाल नेक है। भाई गुरदास जी दी रचना विचों अर्ज कर रहे, भाई साहब ने पहला बचन किया चंद चकोर प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, प्रेम है ते ओ एक टिक चंद्रमा नूं देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, तार दा अखरी अर्थ हुंदा लिव लाणी, एक टिक देखी जाना। भाई साहब कहिंदे ने देखो परमात्मा ने प्रेम एक जानवर विच एक जीव विच एक पंछी विच भी पैदा कर दिता, एक टिक हो के चंद्रमा नूं देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले,
चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले। हुण इत्थे पावे शब्द उन्होंने सूरज खेत क्या है कि चकवी दा सूरज नाल नेक है। दरअसल ओदा सूरज नाल ने नहीं, चकवी दा ने तां अपने चकवे दे नाल है, क्योंकि सूरज चढ़ नाल चानण विच उन्हां दा मिलाप है ते अंधकार विच रात दे खनेरे विच उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा है। हुण इक रात दा विछोड़ा है, सारी रात चकवी ते चकवा एक दूजे नूं पुकारी जा रहे ने। हजूर दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने उस चकवी ते चकवे नूं मनुख वर्गा ओदा शरीर नहीं, मनुख वर्गी ओदी बुद्धि नहीं, मनुख वर्गी ओदी सोचन दी शक्ति नहीं, मनुख जितना ओ कोई कार विखार भी नहीं कर सकदा, पर देख उस चकवी ते चकवे अंदर भी परमात्मा ने खिच रख दिती। एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नूं पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं सकून नहीं जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण ओह केड़ी खिच है जिहड़ी सारी रात कुरलांदे रहे पुकारदे रहे। सिर मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती की एक टेक होके ते अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम दी दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा की है। कमल विच खिच है सूरज नू देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले, नेहो कवल जल जानिए खिड़ मूंह बखाले। खुण पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पै कर दे कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने। जमीन तां ओही है, छप्पड़ टोबा तां ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच, ना सुकी जमीन ते प्रफुल्लत होणगे। पानी रुकण दी देर है ते सौण दे महीने विच कमल दे फुल अपने आप नूं प्रफुल्लत करदे ने ते पानी दे विच ओह पूर्ण तौर ते खिड़ जांदे। अगे मैं अर्ज करनी है, कमल दे फुल दी खिच सूरज नाल भी है, कमल दे फुल नूं जिंदगी पानी भी दे रहा है, पर जिहड़ी दिसदी नहीं ओह खिच पानी विचों उहनूं मिल रही है। भाई साहब ने चौथा बचन कीता, कहन लगे मोर बबीए बोल दे वेख बदल काले। हुण काला बदल असमान ते चढ़ के आउंदा है, जितना मोर उहनूं देख के खुश हुंदा है, हुण बदल दा ते मोर दा आपसी की रिश्ता है। ओह असमान दे उत्ते ओह धरती दे उत्ते जदों काली घटा चढ़ी ते मोर इको दम पहला पान लग पिया ते अपने पंखों ने पूर्ण तौर ते खलार लै बखेर लै। उस बदल नूं देख के मोर दे अंदर भी परमात्मा ने एक खिच पैदा कर दिती, जेड़ी बदल नूं देख के खड़ाओ विच आया ते नचन लग पिया। पपीए वल झाती मारीए, सच जाण्यो बाकी साल दे महीने पपिया कदी भी उच्ची नहीं पुकारदा, पर जदो खाड़ ते सौण दा महीना हुंदा भादों दा उदो पपीए दे गले विच वी राग पैदा हो जांदा, ओह भी बदलां नूं देख के उच्ची उच्ची पुकार लग पिया है। ओदे विच भी एक खिच है, चकोर विच, कमल फुल विच, चकवी विच, मोर ते बबीए विच, ते सच जाणू मां ते पुत्र दी भी एक खिच है। इस्त्री दी पति ते पत्नी दे अंदर भी एक दूजे प्रति खिच है। पर भाई साहब ने सारियां गल्लां करके कहन लगे चंद्रमा दी चकोर नाल प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, पर सच जानी चंद्रमा बेवफाई कर सकदा है प्यारिया, के पानी जेड़ा वो सुख सकदा है, कमल फुल मुरझा सकदा है, चकवी ते चकवे दा विछोड़ा पै सकदा है, चमकदे कोई बदल दूर जा सकदे ने, मोर ते बबीए विलकदे रह सकदे ने, मां ते बाप साथ छड के जा सकदे ने, नार ते पतार दा प्यार है पर मौत प्यार नू विछोड़ सकदी है, पर गुरु ते रब दी प्रीत ऐसी है जिस खिरदे विच टिक जाए सच जानो ए प्रीत मरन तो बाद भी कदी नहीं टुटदी। एक ऐसी प्रीत है, भाई साहब ने प्यार दी व्याख्या करदिया बहुत सोहनी पौड़ी कही, चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले,
चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले न्यू कवल जन जानिया खिड़ मूह बखाले मोर बाबी ए बोल दे वेख बदल काले नार पतार प्यार है मां पुत संभाले पर प्यारिया गुरु नानक दी प्रीत कैसी है पीर मरीदा पिर हड़ी ओ निब है नाले के मरीद दी ते पीर दी जड़ी प्रीत है ओ तोड़ निबण वाली ओ रस्ते विच टुटन वाली नहीं। आप तवज्जो देना गुरु नानक साहब ने उस करतार दी प्रेमा भगती की थी। ते जदो असी बाबे नानक जी दी बाणी पढ़ने हैं ते उन्हां ने अपनी अमृत बाणी विच अपने मन नूं मुखातब करके प्यारे नूं प्यार करन दे कुछ जुगतां सानूं दसी। हजूर दी श्री राग विच एक अष्टपदी है उस अष्टपदी दे कुछ पदे मैं आप जी दे समक्ष रखने चाहना हां कि सतगुरु गुरु नानक साहब दी प्रेमा भगती कैसी है। उस अष्टपदी दियां रहाओ दियां तुकां ने रहाओ दे बचन ने मन रे क्यों छूटा बिन प्यार हे मेरे मना की परमात्मा नू प्रेम तो करन तो बिना तेरा खेड़ा छुट सकदा है की तू बंधना तो मुक्त हो सकना परमात्मा नू प्रेम करन तो बिना मन रे क्यों छूटा बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहा हर बख्शे भगत भंडार। गुरु दे राही ये समझ पैंदी है कि परमात्मा सारिया थावां ते रविया है ते गुरु कृपा करे ते भगती दे भंडारे बख्शदा है। रहाओ दी तुक नू फिर समझिए मन रे क्यों छूटा बिन प्यार प्यार तो बिना प्रेम तो बिना उस परमात्मा नू कदी तू खुश नहीं कर सकदा। गुरु तो बिना तेनू प्रेम करन दी जुगत नहीं आउणी। वैसे तां जे इंसान नू समझ पै जाए कि प्रेम प्रीत प्यार ने ये जितने भी शब्द असीं वरतने आ जे इंसान दे शरीर अंदर तन अंदर परमात्मा दी प्रीत नहीं प्यार नहीं ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने प्राण प्यार तो प्रीत तो बिना जिहड़े मनुखां दे तन ने कहिंदे ने मानो उह तां इस तरह ने जिवें शमशान भूमि विच मुरदे सड़ के किसे मिट्टी दा ढेर हो जा उह तां इस तरह ने कि जिवें मानो कि एक मरिया होया शरीर प्यार है मरे हुए शरीर विच कोई हरकत नहीं ते जिस मनुख दे जिस्म अंदर परमात्मा दा प्यार नहीं सच जाणियो ओ खाए भी पीए भी बोले भी पर गुरु दी नजर विच एक ओ जिंदा लाश है ओ मुर्दा है जे उस अंदर प्रीत नहीं तां प्यार तो बिना छुट नहीं सकदा। हजूर दे बचन सी पढ़ने हैं अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत ए सारे गुण होण दे बावजूद भी मृतक कहीं नानका जे प्रीत नहीं भगवंत बाबा नानक जी कह रहे ने मन रे क्यों छूटा है बिन प्यार मृतक कहीं नानका जे प्रीत नहीं भगवंत जे उस परमात्मा ली प्यार नहीं ते सच जानी ओ शरीर मुर्दे दे समान है उस शरीर दा कोई अर्थ नहीं ओ मुर्दे नू जितना मर्जी कोई शिंगारी जाए ते उस दा अर्थ की है कुछ भी नहीं। हजूर ने कहा प्रीत तो बिना बाबा फरीद साहब दे बचन सी पढ़ने उन्होंने जोबन की गल की हुण जवानी अपने आप विच परमात्मा की एक बड़ी वड्डी दात है ते जे किसे बंदे दे कोल जोबन भी है पर जोबन होने के बावजूद उस दे अंदर प्यारे की प्रीत नहीं ते मेरे धन गुरु ग्रंथ साहब विच बाबा फरीद साहब कहिंदे ने प्रीत तो बिना मनुख दा तन शमशान भूमि है प्रीत तो बिना ता जवानी सड़ के राख हो जाए उदा करना की है। बाबा जी ने अमृत बचन कह जोबन जांदे ना डरा जे सह प्रीत ना जाए किन्ने जोबन जानदा वक्त दे जानदा समय दा जानदा सानू कोई डर नहीं डर तां उदो है जदों वक्त समा जा जोबन जा जीवन परमात्मा दे प्रेम तो बिना चला जाए सिमरन तो बिना चला जाए। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने अपनिया गजलां विच पहला शेर ही ये क्या है पहली गजल दा कहन लगे खवाए बंदगी आ वुर्द दर वजूद मरा ए मिनसान तू वजूद विच ता आया है कि परमात्मा दी इबादत करे परमात्मा दी बंदगी करे जे परमात्मा दी बंदगी नहीं सी करनी ते फिर इस वजूद विच इस तन विच आउण दा लाभ की। कहन लगे फिर एवें आसमान दे थले अपनी जिंदगी दे दिन प्या कटना
बंदगी करके ही जिंदगी है, जे बंदगी नहीं ते सच जानी फिर जिंदगी नहीं।

0: कथा का मतलब है कि विचार के सुन के पढ़ के को के उदे अनुसार अपना अमली जीवन भी ढालना शुरू कर देना। कमल का फुल पानी विच खिड़िया है, पानी दे विच निक्कियां निक्कियां तरंगा पैदा हुईयां, लहरां पैदा हुईयां, ते जदो पानी दी लहर इकोदम थोड़ी जी हवा नाल तेज होई ते कमल दी नाड़ कमल दी निक्के जे बूटे दे तने नूं वजी, कमल दी नाली नूं वजन दी देर सी पानी दी लहर, ते कमल जेड़ा जड़ तो लैके फुल तक पूर्ण तौर ते कंब गया। इकोदम उस लहर ने कमल नूं पछाड़िया, कदी ओनू लहर धक्का मार के खब्बे कदी सजे, ओनू सारा दिन लहर अपने ठोकरां दे वास विच केवल अपने ठोकरां नाल खब्बे सजे नूं धक्दी रही। ते बाबा जी ने उत्थे क्या कहन लगे, ओ मना जे प्रेमा भगती करनी आ ते इस कमल फुल तो सिख रब नूं प्रीत किवें करीदी है। नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिबलाई, किहो जिहा प्यार होवे, प्यार जेड़ा गिलवे शिके नहीं करदा हुंदा, प्यार कदी उलामे नहीं देंदा हुंदा। ते सच जाण्यो जेड़ा बंदा मित्रता करदिया होया भी उलामे गिले शिकवे करदा, ओ कदी प्रेमी नहीं हो सकदा, ओ कदी प्यारा नहीं हो सकदा। कहन लगे इस कमल दे फुल नूं पुछ के प्रेमा भगती की है। हजूर ने पुछया कमल दे फुल नूं, ते बाणी विच ए गल्लां दर्ज कर दित्तियां कि ए कमल दे फुल तेनू रब ने सब तो पहला गुण ए दिता है, तू चिक्कड़ विच रह के भी निर्लेप है। दूजा गुण तेनू परमात्मा ने दिता है कि तेरे कुल कोमलता है। तीजा गुण तेनू दिता है तेरे कुल सुगंधी है। चौथा गुण तेनू दिता है तेरे विच खिच है। तू करोड़ा को दूर बैठे सूरज नाल भी गल्ला प्या करना है, जिदे कुल सुगंधी होवे, जिदे कुल निर्लेपता होवे, जिदे कुल अपना सुहापन होवे, जिदे कुल दूर टिके कोई प्रेमी नू प्यार करन दी भी जांच होवे, की लोड़े इस मैले जे पानी दियां ठोकरां खान दी। ए पानी उठदा सवेरे लहरां बन के तेरे नाली नू तेरे इस तने नू रोज ए ठोकरां मार दे, छड परा इहो जे पानी नू। हजूर कहिंदे ने उस कमल दे फुल दा उत्तर सी, कहिंदा बाबा जी के असल विच इस पानी दी बदौलत ही मेरी खौंद है। जिस दिन मैं पानी नू छड़ दिता उस दिन जेड़े गुण तुसी मेरे गिनाए ने इन्हां विचों एक भी गुण नहीं रहना। पानी नू छड़न दी देर कि मेरा आपा ही खत्म हो जाना है, मेरी खौंद नू खतरा है। कहन लगे ना सूरज दा प्यार, ना इहदे तो निर्लेप दा, ना सुगंधी, ना रूप ते ना भवरे, तां की होया जे पानी ठोकरा मारदा। आखिर जेड़े तुसी गुण गिण के दसे ने ए गुण भी तां मैनू पानी ने कृपा करके बख्शे ने ना, जिन्हें गुण दिते ने इहदी ठोकर भी सहारांगे। हजूर ने कहा ऐ मनुख प्रेमा भगती दा अर्थ है कमल दी थरा तू प्यार कर। किवें? परमात्मा ने तेनू सुंदर दे दिती है, परमात्मा ने तेनू गुणा दी सुगंधी दिती है, परमात्मा ने तेनू सुरत दिती है संसार विचों निर्लेप रहन दी जुगत दिती है, परमात्मा ने तेनू ताकत दिती है करोड़ा जन्मा दी दूरी होने दे बावजूद तू सुरत करके ओदे चरणा नू पकड़ के खेड़ा प्राप्त कर सकना है। जिस परमात्मा देव ने कमल दी तरह तेरे ते इन्नी कृपा कीती होवे ते जे फिर भी थोड़ा जा झटका लगे दुनियावी ते यक लखत परमात्मा वालों मुंह मोड़ के पिट करके चला जाए, सच जानी ए कदी सच्चे प्रेमी नहीं हुंदे। प्रेमी ता होवे जेड़ा ठोकर खा के भी अपने प्यारे दा लड़ कदी ना छड्डे। एवे प्रेमा भगती बाबे नानक ने ऐसी प्रेमा भगती कीती ते बाणी विच बचन कर गए। कहन लगे रे मन ऐसी हरसों प्रीत कर। रे मन दा अर्थ अपने मन नू संबोधन कीता, अपने मन नू मुखातब कीता। कह लगे रे मन ऐसी हरसों प्रीत कर जैसी जल कमले। जिमें कमल ते पानी दी प्रीत है, लहरी नाल पछाड़िया, जे लहरां ओनू उठ के पछाड़दियां ने धक्के मारदियां ने ती विगसै असने, ओ लहरां दियां ठोकरां विच भी खसी जांदा है, ओ ठोकरां विचों भी प्रेम दियां पिंगां झुटी जा रहे हैं। मेरे बाबे नानक ने इस तरह प्रीत कीती जिवें कमल दा फुल ठोकरां सहार के भी प्रीत प्या करदा सी। जे किसे ने वट्टा चुकिया, जे किसे ने दीवाना किया, जे किसे ने मस्ताना किया, जे किसी ने पागल किया सब कुछ सह के भी मेरे गुरु नानक साहब ने अपने प्यारे परमात्मा दे नाम नू फिर भी प्रीत की थी। दूसरी उदाहरण कृपालू दाता जी ने अमृत बाणी भी दिती कि किहो जी प्रेमा भगती करदे पए प्रमाण देंदे ने मना परमात्मा दी भगती जे तू करन तुरिया है ते प्रेमा भगती इस तरह कर जिवें मच्छी ते पानी दा आपसी प्रेम है। वैसे ता प्रीत है मच्छी दिखे कि जितना पानी वध होवे उतना मच्छी खेड़े विच रहिंदी है, जितना पानी घटदा है त्यों त्यों मच्छी विच उदासीनता ते तड़ पैदा हुंदी है। ज्यों ज्यों परमात्मा दा भगत बंदगी करदा है त्यों त्यों खेड़े विच आउंदा है ते जदों किते तोटा आ जाए सच जाणो ओ मच्छी दी तरह लुड़छन लग पैंदा है, तड़पन लग पैंदा है। ते बाबा जी ने कहा रे मन ऐसी खरसों प्रीत कर नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिवलाई। रे मन ऐसी खरसों प्रीत कर कैसी कहन लगे जैसी मछली नीर जिमें मच्छी पानी नू प्रीत भी कर दी है। ज्यो अद कहो तो सुख घना जितना पानी ज्यादा होवे मच्छी ओनी प्रसन्न है। कहन लगे ज्यो अद कहो तो सुख घना मन तन शांत शरीर ओदे तन नू ओदे मन नू खेड़ा क्योंकि मच्छी पानी विच रह के आपदी आनंद विच है। ऐसी प्रीत कर। बाबा जी ने तीसरा प्रमाण दिता कि प्रेमा भगती की है, मच्छी पानी तो बिना किसी नाल समझौता नहीं करदी। तीसरा प्रमाण दितो ने कि रे मन ऐसी खरसों प्रीत कर नानक नाम निरंजन जान्यो इस तरह। कहन लगे रे मन ऐसी खरसों प्रीत कर जैसी चात्रक में जिवें एक पपिया स्वांती बूंद नू प्यार प्या करदा है, जिवें एक चात्रक नक्षत्र तो डिगण वाली बूंद नू उडीकदा प्या है। उहदे सामने सरोवर पानी दे भरे ने पर कदी उह सरोवर दा पानी नहीं पीएगा, तालाब पानी दे भरे ने पर चात्रक उस पानी नू पसंद नहीं करेगा, दरिया पानी दे भर के वगदे ने पर कदी भी उह इस नू प्यार नहीं करेगा। पर प्यारियो सब कुछ ओ पानी वक्रे वक्रे तलाबां दे खूहां दे नदियां दे नालियां दे त्याग देगा। ओदे प्राणा दी जेड़ी प्रीत है ओ केवल ता केवल परम पिता परमेश्वर दा नाम है। जिवें चात्रक स्वांति बूंद नू प्यार करदा है ते रब दी बंदगी करन वाला सब कुछ छड़ देंदा है, सच जाणो ओनू केवल गुरु ते परमात्मा ही चाहीदा है। मैं एक खिन विचों निकल के एक प्रमाण एदे नाल होर अर्ज करना चाहना। चात्रक कदी भी समझौता नहीं करता स्वांति बूंद तो बिना। मेरे गुरु अर्जुन साहब नू पुछया दाता जी प्रेमा भगती की है, उन्होंने एक प्रमाण दिता ओहा प्रेम पिरी। प्रेमा भगत की है ओहा प्रेम पिरी, कहन लगे कनक मानक गज मोतियन लालन नह नहा नहीं। प्रेमा भगती एक है कि जे कोई प्यारे दे सामने लिया के हीरियां दे ढेर ला के कह तू बंदगी छड़ दे गुरु नू छड़ दे कीमती हीरे चुक ले, जे कोई ओदे सामने कीमती मोती लिया के कह मोतियां नाल झोलियां भर ले पर नाम दे मोती नू छड़ दे, जे कोई ओदे सामने कीमती गज ए भी मोती कह सामने लिया के रखे तू परमात्मा दी इबादत छड़ दे। साहब कहंदे ने जिहड़े प्रेमा भगती करन वाले ने ओ कह रहे ने ओहा प्रेम प्री कनक मन गज मोतियां लालन नह नह नहीं। जे कोई कह चल हीरे मोती छड तेनू आ तखत दे देने आ, तेनू आ दुनिया दा हर स्वाद हंडाण वास्ते भोगां वास्ते पदार्थ दे देने आ, अगो उत्तर मिलदा राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किच किच ना चाही। नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिवलाई। ओहा प्रेम प्री कनक मान गज मोतियां लालन नह ना नहीं। राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किच किच ना चही। ओनू चाहिदा कि चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही। कहन लगे नानक तपत हरी मिले प्रेम प्री एवे प्रेमा भगती। मेनू तेरे चरणा दी शरण चाही दिखे। नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिवलाई। भगती प्रेमा लाक लिव ला के कीती ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਖਰਸ਼ੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਚਾਤਰਕ ਮੈਂ ਸਰ ਭਰ ਥਲ ਹਰੀ ਆਵਲੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾ ਪਵਹੀ, ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਪਰ ਚਾਤਰਕ ਦੀ ਪਿਆਸ ਕੇਵਲ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਹੀ ਬੁਝਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੱਛੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਚਾਤਰਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ ਕੀ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਿਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਇਹ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੇਕ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਬੋਲੇਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬੁਲਾਇਓ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਵਰਜਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਵਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਦੇਰ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੀ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? ਰਸਨਾ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਕੂਕੇਗੀ, ਰੱਬ ਲਈ ਕਦੀ ਨੀ ਕੂਕਦੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੂਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਕੇਵਲ ਨੀ ਕੂਕਦੀ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਨੇ ਹਰ ਰੋਮ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕੂਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਜੇ ਵੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਹੇ ਰਸ ਗਏ ਮਧੁਰ ਪ੍ਰੈ ਤੋਇੰਗ, ਹੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਖਣ ਵਾਲੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਖੇ ਜੇ ਵੇ ਖੇ ਰਸ ਗਏ ਮਧੁਰ ਪ੍ਰੈ ਤੋਇੰਗ ਸਤ ਹਤੰਗ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਖੇ ਜੇ ਵੇ ਖੇ ਰਸ ਗਏ ਮਧੁਰ ਪ੍ਰੈ ਤੋਇੰਗ ਸਤ ਹਤੰਗ, ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਮ ਬਾਦੰਗ, ਜੇ ਪਰਮ ਬਾਦਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੀਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਸਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੀ ਏ। ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਤੀਸੀ ਖਲਾਣ ਦੀ ਦੇ ਰੇ ਤੇ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਵਾੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ, ਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੇ ਰਸਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜੇ ਜੇਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੀਸੀ ਖਲਾਏ ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਵਾੜੇ, ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਏ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਏ, ਜੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਮਿਟਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਦੂਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੂਰੀ ਮਿਟਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਵੋ ਲੱਖ ਹੋ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵਲਾਈ, ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਲੱਖ ਜੀਵ ਹੋ ਗਈ, ਲੱਖ ਦੀਵ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ 20 ਲੱਖ ਜੀਵ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨਾਲ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਤੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਜੀਵੋ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲਖਵੀਸ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਤਰਾਹ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਆਕੀਸ, ਇਹਨੇ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਮਾਰਗ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ, ਕੀਤਾ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਏ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਠੀਸ, ਠੀਸਦਾ ਅਖਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਪ ਮਾਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੇਂਗਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ, ਤੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾ ਕਰ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਤਾਂ ਆਈ ਰੀਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਵੋ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੂੜਾ, ਕੂੜੀ ਠੀਸ, ਕੂੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੂੜੀ ਗੱਪ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੂੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੂੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਖੋਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੋ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਚੋਂਦਾ, ਗਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਸ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੂਜੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਲਟਿਆ ਜਾਂਦਾ।
1: ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਇੱਕ ਕਦ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਸੈਕੜਿਆਂ ਚ ਇੱਕ ਕਦ ਨਹੀਂ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੇ ਕਿਨਹੁ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਪਛਾਨ, ਕੋਟਨ ਮੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਸ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਸਦੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਬੋਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲਦਾ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਚ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮੇ ਚ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਪਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਭੁੱਲ ਗਏ, ਭੁਲਿਆ ਕਿਉਂ, ਸਮਝਦੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਂਝ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, केड़ी दो जगह ते नहीं है, समझ दे च नहीं है, चेते दे च नहीं, बाकी सब जगह ऐसी कोई जगह नहीं जिथे रब नहीं है। पर फिर भी धार्मिक विद्वान कहने दो थावां ते नहीं है, बाकी सब जगह है, समझ दे च नहीं है, चेते दे च नहीं है। पशु की जिंदगी दसदी है, इनू मां बहन की समझ नहीं, इनू परिवार की समझ नहीं, मनुख की जिंदगी दसदी इनू निरंकार की समझ नहीं है, नहीं है। इहदा व्यवहार दसदा, इहदी तर्ज जिंदगी दसदी है, इहदी जीवन शैली दसदी है, परमात्मा की समझ नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने जन्म ते हो गए, ते हुण मैं ये भी अर्ज करा, जन्म बच्चे की तरह आउंदा है। कदी कदी संसार विच कुछ इस तरह के महान रूहां का जन्म भी होया, जिन्हां नूं असीं कह सकते हैं बुढ़िया की तरह जन्म होया। चीन दे च कहिंदे ने लाओत्से जिहड़ा संत होया, कहिंदे ने बुढ़िया की तरह पैदा होया। ते बुढ़े तो मुराद जन्म तो समझदार सी, जन्म तो ज्ञानी सी, जन्म तो सूझवान सी, जन्म तो दूरदृष्ट सी। भट्ट गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ते जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, ए गुरु अर्जन देव जी तुसी ते जमदे ही ब्रह्म ज्ञानी, हे गुरु अर्जन देव जी महाराज थोड़े शरीर का जन्म होया, शरीर के नाल नाल धर्म का जन्म होया, ते जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणे। कहिंदे ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज 2.5 साल दे सन, गुरु अमरदास जी महाराज का सिंघासन गोविंदवाल साहब की गल है, चढ़न की कोशिश पे करते सन, उपर तखत से चढ़न की कोशिश पे करते सन। भजे हुए माता भानी जी आए, उन्होंने चुक लिया, आखिया लाल जी ये गुरु नानक का तखत है, ये तीजे गुरु नानक का सिंघासन है, इसते बैठने की कोशिश ना करना, इसते आइंदा ना चढ़ना। प्यार नाल डांटदे आया बच्चे नूं कह रहे, बालक गुरु अर्जन देव जी इस तखत ते नहीं बैठना, चढ़न की कोशिश ना करनी, ये गुरु नानक का सिंघासन है। गुरु अमरदास जी महाराज सुते सिदा गए, भानी दे हथों 2.5 साल दे इस बच्चे नूं लेके बालक गुरु अर्जन देव जी नूं सिंघासन ते बिठा दिता, आखिया बहुता बाणी का बहुता, इते बाणी दा जहाज है, जे ए नहीं सिंघासन ते बैठेगा ते होर कौन बैठेगा, इते धुर दरगाहों बैठे होया है, इनू ते रब ने बिठाया, इनू ते परमात्मा ने बिठाया, इते प्रभु दी गोद विच है, और इस दे आसरे ते पता नहीं कितनिया नूं परमात्मा दी गोद हासिल होवेगी। इते बहुत है, इते जहाज है, इहदे आसरे पता नहीं कितने पार होणगे, ये नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा। जन्म तो बुजुर्ग कोई करोड़ा च एक अद कदी कदी, जन्म सारिया के बच्चे की तरह होता है, शरीरक तौर पर भी बच्चे, दिमागी तौर पर भी बच्चे, ना समझी कुछ भी पता नहीं। कदी कदाई संसार के इतिहास में कोई बुढ़िया की तरह पैदा होता है, चीन देचे कथा है भाई लाद से बुढ़िया की तरह पैदा होया, भाव जन्म तो ज्ञानी हो। कबीर बारे कहने ने कमल तो पैदा होया, विष्णु नु कहने ने कमल तो पैदा होया, ब्रह्मे नु कहने ने कमल तो पैदा होया, नहीं जन्म तो कमल जैसे से डुबे नहीं, गर्क नहीं हो, समझ से जैसे पानी देच कमल डुबदा नहीं। जिहड़े मनुख संसार विच डुबन ना, पदार्थां विच डुबन ना, वो कमल दी तरह होंदे ते डुबे होए ने, सहजे सहजे फिर तैरना ते निर्लेप होना सिखदे ने, पर कोई जन्म तो भी निर्लेप होंदा है। उहनां नूं कहिंदे ने इहनां दा जन्म ते कमल तो होया, भाव कमल जैसे ने, कमल डुबदा ने। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने हम देखा तैं डुबे आए, पहले पातशाह जी दा वाक, महाराज कहंदे मैं ते देखदा डुबे पए, डुबे पए। ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਗਊਆਂ ਵੀ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੀਤੇ ਵੀ ਤੈਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, 60 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਹਾਥੀ ਨਹਾਵੇ ਪਿਆ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਥੀ ਤੈਰ ਰਹੇ, ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਤੈਰ ਰਹੇ, ਹਾਥੀ ਤੈਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਊਆਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਚੀਤੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਦਾ, ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬਦਾ। ਕਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ? ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਗਊਆਂ ਤੇ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਦਾ। ਕਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ? ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ, ਮੁਰਦੇ ਤੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਤੈਰਦੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਅਗਰ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਣ ਮਣ ਦੋ ਦੋ ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਲਾਸ਼ ਤੈਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਰਦੀ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਦੇ ਤੈਰਦੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਡੁੱਬਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਜੀਵਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਦਾ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗਾੜ ਬੈਠਦਾ, ਤਵਾਜ਼ਨ ਖੋ ਬੈਠਦਾ, ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ, ਤਾਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਲੋਭ ਇਸਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਹੰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇਹਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਹਮ ਦੇ ਥਾਂ ਤੈਂ ਡੁੱਬੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਡੁੱਬੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਹਿਤ ਬੈ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਇਆ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤੈਂ ਡੁੱਬੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਰਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੁੱਬੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਪ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਤਵਾਜ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਠੀਕ ਰੱਖਦਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ, ਕਮਲ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ, ਧਨ ਘਰ ਦੇ ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਤਾ ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ, ਹਮ ਦੇ ਥਾਂ ਤੈਂ ਡੁੱਬੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਡੁੱਬੀ ਪਈ। ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਣਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਨਣਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਗਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਚ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ। ठीक है, गुण रोशनी ने, औगुण अंधेरा। जितने औगुण होंगे उतने ही भटकदा होया मनुख होगा, अंधेरा होगा। जितना गुण होंगे उतना ही उदी जिंदगी देच चानना होगा, प्रकाश होगा। और जीवन सही मार्ग पे चल रहे होगा। तो मैं फिर दोहरावा, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ने, हे प्रभु मैं तेरे मार्ग ते चलते पिया, तो चल दी की है सुरत चल दी है। तुसी चल के आ गए, शरीर चल के आ गए, पैर चल के आ गए ने, इहदे नाल हाजरी असी भरी है। असी गुरु की हजूरी च नहीं गए, गुरु की हजूरी च सुरत जाती है। शब्द नाल सुरत जुड़ेगी, हाथ पैर नहीं जुड़ते। इस वास्ते हाजरी भरना होर गल है, गुरु की हजूरी विच चले जाना होर गल है। अगर 10,000 बंदे हाजरी पे भर देन, गुरु गुरु की हाजरी पे भर देन, एक दो बंदे आने जिन्होंने गुरु की हजूरी नसीब हो गए। कलगीधर पिता दे रसना तो ये बोल निकलिया सी, हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर। शायद जिन्होंने साखी सुनी, हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर। जितने बैठे हुए सन उन्होंने सुरत उठे नहीं सी, ध्यान उठे नहीं सी, सुरत शब्द बेच नहीं सी। हाजर गैर हाजर कुछ नहीं पहुंच सके सन, उन्होंने ध्यान उठे सी। गैर हाजर हाजर चलना ते सुरत ने ना, सुरत अगर शब्द की तरफ चल पाई है तो मैं ये भी तरह दोहरा दें ताकि गल पूरी समझ में आवे। सुरत दे तीन अर्थ ने, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। स्रोते शब्द तो बने हैं सुरत, भई ये ते स्रोता है, ये ते सुरत दे च है, सुन रहे हैं। एक सैकंड दे तीन घटनावां घटदियां ने एक ही समय। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, इते स्रोता है, सुरत दे च है। अगर ये सुरत दे च है तो इन्हें सुरत आ जाएगी, अगर सुरत आ गई तो सुरत जुड़ जाएगी। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, ये तीन घटनावां एक सैकंड दे घट दें। जिस वक्त मनुख सुनता है उसे वक्त ही समझ आ जाती है, उसे वक्त ही जुड़ जाता है। ये घटना एक सैकंड दे घटती है, एक सैकंड दे घटती है। इधर जबान ने आख्या वाहे गुरु, इधर मन ने सुने, इधर मन ने सुने, इधर मन नु समझ आ गई, इधर मन नु समझ आई, मन शब्द विच लीन हो गया, जुड़ गया। मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण, जुड़ गया ज्योति ज्योत रली संपूर्ण है, ज्योत दे ज्योत हो गई, जीवन यात्रा संपूर्ण हो गई। होंदी इक छिन विच है, निर्माण कीर्तन गावो कर तेका निमक सिमरत जित छूटे। निमक निमक एक सैकड़ है, एक चित जै एक छिन दे आयो, काल फास के बीच न आयो। एक छिन एक निमक, इन अतकथनी ना समझ लेना। किसे कमरे विच 50 साल का अंधेरा हो, गुप अंधेरा हो, उस अंधेरे नू कढ़न वास्ते 50 साल लगणगे नहीं, एक सैकंड लगेगा, बत्ती जलाई दे गया। जन्म जन्मांतरां दे पाप दुख संताप ते अंधेरा, इनू कढ़न वास्ते कई जन्म लगणगे नहीं, एक सैकंड लगेगा। टुक दम करारी जो करो हाजर हजूर खुदा, एक दम दे टिक जाओ खुदा हाजर ना, ते एक दम ही आज है। बाबा फरीद कहते ने, आज मिला वा शेख फरीद, टाकम गूंजणिया मनो मचिंदरिया। मैं पानी हुण पीना, प्यास कल मिटेगी कि हुणे मिटदी, मैं भोजन हुण छका हुणे भुख मिटदी है या महीने बाद मिटदी है। मैं नाम हुण जपा फल अगले जन्म विच मिलेगा, साल दो साल बाद मिलेगा। इन्हां गल्लां ने मनुख नूं निराश कीता होया। भी मैं अर्ज करा ऐसी गल नहीं है। ऐकर करे सो ऐकर पाए महाराज गए तत् टुक दम करारी जो करो एक दम विच किधरे टिक जाओ। हाजर हजूर खुदा है। मैं पानी हुण पीवा ते प्यास महीने बाद मिटेगी। मैं रोटी हुण खावा ते भुख कल मिटेगी। लोकी कहिंदे ने कोई नहीं सहजे सहजे हो जाएगा, गासी लग जांदी हौले हौले। बंदे नूं ताप चढ़े होवे बड़ा जोरदार ते वो डॉक्टर नूं कहिंदे जरा हौले हौले बुखार मेरा उतारी, महीना दो महीना तड़पदा रहा। कहिंदे छेती कर, जल्दी ठीक कर। विकारां दा अज्ञानता दा ताप मन नूं चढ़े होवे हौले हौले हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। ये ठीक नहीं होना चाहता। ये रोगी रोग नाल भी मोह कर बैठा है। मनोचिंतक ऐसा कहने लंबी बीमारी दे जीण वाले मरीज बीमारी नाल सहमत होकर जीवदे ने और निराश हो जाते हैं भी ठीक नहीं होवांगे। कोई दसे भी सही उन्होंने ए दवाई ले लो ए दवाई ले लो, उन्होंने अंदर निराशा है। रोग दे जीण की आदत बन गई, विकारां दे जीण का सुभाव बन गया। हुण ठीक होने का ख्याल भी नहीं और ठीक हो सकांगे ऐसा भरोसा भी नहीं पाई। नहीं ठीक हो सकांगे इहदे जीवना पैदा। जैसे जर्मनी के प्रसिद्ध डॉक्टर हो गुजरे फ्रायड ने कहा है हंकार विच काम विच क्रोध विच लोभ विच जीना पै गया इहदा कोई इलाज नहीं। थोड़ा जिहा इन्हां नूं मदन कीता जा सकदा है, बाकी इन्हां दा त्याग नहीं हो सकता। जीवन नूं छड़ नहीं सकदे, इन्हां दे जीवना ही है। यूरोप के पढ़े लिखे बंदियां नूं इस फ्रायड ने बड़ा निराश किया है। जीवना ही है, इहदे जीवना पैगा। उन्हें ऐलानिया किया भारत के संत गलत कहिंदे ने, मन विच राम है। कहिंदा नहीं मन विच काम है। मन विच निरंकार है। कहिंदा कता ही नहीं मन विच हंकार है। इंज कहिंदा है, कहिंदा मैं मन नूं फोल के देखिया सिवाय हंकार तो होर कुछ भी नहीं। मैं मन नूं फोल के देखिया सिवाय वासना तो होर कुछ भी नहीं। मैं मन नूं फोल के देखिया कहिंदा सिवाय काम तो होर कुछ नहीं। एवें कही जांदे राम है मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछा। एक सीमा तक वो ठीक कहिंदा है, एक सीमा तक। जैसे सागर दे उपर उपर ते लहरां ने या कुछ लभण गया मछलियां ने संख ने सिपियां ने मोती ते गहरे कर दे किसे किसे दे हाथां उपर उपर ते वाकई मन दे ख्वाहिशां ने कामनावां ने वासनावां ने जो बहुत गहरे डुबकी ला लैंदे ने उन्हां नूं राम नाम दा हीरा मिल जांदा है। तन में मनवा मन में साचा सो साचा मिल साचे राचा। तन विच मन है मन विच सच, तन विच मन है मन विच प्रभु है। मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। खेड सारी पहचानण दी है, पहचानण दी है। जिसनों मैं नहीं जानता वो नहीं है, जिसनों मैं नहीं समझदा वो नहीं है। जो मेरे चेते च नहीं वो नहीं है, जो मेरी स्मृति च नहीं वो नहीं है, जो मेरी समझ दे च नहीं वो नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं हे प्रभु चलते पिया तेरे मार्ग ते पर उस बच्चे की तरह जिसने अज चलना सीखे। दो साल बाद ढाई साल बाद डेढ़ साल बाद बच्चे चल रहे हैं पैर पुट रहे खड़े हो गए। चार पांच साल का बच्चा हो बच्चा चले ना मां बाप को चिंता हो जाती है। गल की है बच्चा खड़ा नहीं होता पैर नहीं पुटता। चार साल का हो गया पांच साल का हो गया डॉक्टरों को ले जाने वैद को ले जाने। तीन साल का हो गया चार साल का हो गया मुंह अक्खर नहीं निकलता बोलता नहीं। मां बाप को चिंता हो जाती है। जिस दिन बच्चे की जबान तो पहला बोल निकलता है अक्सर मां ही निकलता है। घर दे खुशियां मनाईया घर दे प्रसाद वंडते हैं मिठाइया वंडते हैं नचते ने टपते ने बच्चा बोलन लगते है। जिस दिन बच्चा कदम पुटे बच्चे ने कदम पुटे चलन लगते है। चलो एक कदम ही सही कदम तो पुटे खड़ा तो हो कोई ती 40 साल तो गुरुद्वारे आ रहे होवे ते अजे भी सुरत नहीं चली शब्द की तरफ यकीन जानो गुरु नु भी चिंता हो जाती है गल की है इन्ने चिर हो गया गुरुद्वारे आउंदे 50 साल हो गया गुरुद्वारे आउंदे अजे भी अमृत वेले उठ के रसना वाहेगुरु वाहेगुरु नहीं जपदे गुरु नु भी चिंता हो जाती है बोलना ही नहीं आया बाबा बोलना क्या कहिए जैसे राम नाम रव रही इन्हू बोलना ही नहीं आया ये बोलता ही नहीं 50 साल का हो गया बोलता नहीं फिर ये 30-35 साल हो गए ने इन्हू चलता ही नहीं चलना ते सुरत ने जपना ते रसना ने रसना नाम जपो तब मतिए इन बिद अमृत पाओ जपना रसना ना लो और जपन दे जो ढंग इस्तेमाल करना है गुरु नानक ने दस दिता है गाविए सुनिए मन रखिए जबान गायन करे ते मन सुने मन स्रोता बने जबान वक्ता बने अगर जबान वक्ता बन के मन स्रोता बन गया ये पुरुष पहुंच गया जबान वक्ता ते बनी मन स्रोता नहीं बने ये चलते पे पहुंचे कोई जबान वक्ता ही नहीं बने जपदा ही नहीं ते उस बच्चे की तरह होया 4-5 साल का हो गया मुंह बोल नहीं निकलते पे मां बाप नो चिंता गल की है बोलता नहीं डिगना की है ते चलना की है सत्संग विच आया चल पे है कुसंगत विच बैठा है डिग गया सच बोले है चल पे है झूठ बोल रहे है डिग पे दान कीता है चल पे है बेईमानी कर रहे है डिग पे अमृत दी प्यास पैदा हुई है चल पे है शराब दी तलब जाग पई है डिग पे जिंदगी भर ये चलना डिगना यही आंदा हाथ दे गुटका है चल पे है पर गंदे गीत अला पे है डिग पे है तुसी देख सकते चल देने डिग देने चल दे सारी जिंदगी चल पेने डिग पेने कदम अगे तरफ उड़दे डिगदे पिछे दी तरफ फिर उत्थे ही आ जांदे ने जिथों चले और सारा दिन कोई मनुख एक कदम अगे एक कदम पिछे पुटे किथे पहुंचेगा किधरे पहुंचेगा चल चल के थकेगा चल चल के टूटेगा पहुंचेगा किधरे नहीं दावे नाल मैं कह सकदा 40-40 साल तो जड़े गुरुद्वारे आ रहे ने 40 साल पहले क्रोधी सन अज भी क्रोधी ने 40 साल पहले लोभी सन अज भी लोभी ने 40 साल पहले झूठे सन अज भी झूठे ने और 40 साल पहले वासना दे भरे हुए सन अज भी ने कल ते कुछ भी ना बने मेहनत ते बड़ी की थी थके भी ने टूटे भी 40 साल पहले हंकारी सन अज भी हंकारी खेड़ते कुछ भी ना चले ने चल चल के थके ने टूटे ने पहुंचे किधरे भी हे प्रभु मैं ते चलना ते डिगदा तू मेर कर तू मेरी बां पकड़ खेड़ बने दास गोविंद फतेह सतगुर की बांह दे मोहे निस्तार गुरु गोविंद सिंह जी हे प्रभु अपनी बांह दे अपनी बांह पकड़ा ते डिगण तो बचिए मेरे कोल ओ कन नहीं जो तेरे बोल सुन सकन मनुख कोल जिहड़े कन ने ये पुत्र नूं सुन सकदे ने मित्र नूं सुन सकदे ने पत्नी नूं सुन सकदे ने पति नूं सुन सकदे ने भरा नूं सुन सकदे ने मित्रां नूं सुन सकदे ने गुरु नूं नहीं सुनदे ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਨ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਤੌਫੀਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ। ਪਹੁੰਚਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਬ ਤੱਕ, ਦਿਲ ਸੇ ਜੋ ਬਾਤ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤੇ ਪਰਵਾਸ ਮਗਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾ ਕਿਹਾ ਦਰਗੇ ਚਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਚੱਲਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣੋ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ। ਭਗਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਦਿਲ ਤੱਕ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਦਿਲ ਸੇ ਜੋ ਬਾਤ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤੇ ਪਰਵਾਸ ਮਗਰ ਰੱਖਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਨੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਨੇਤਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ। ਉਹ ਨੇਤਰ ਤੇ ਕਰੂਪ ਨੇ, ਮਹਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਰਥ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਨੇਤਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਜੋ ਆਇਆ ਗਾਲਬਨ 150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੋਕੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤਾ, ਇਸ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਮਹਿਤ ਕਰ ਓਤ ਪੋਤ ਸੰਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਵਣ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ ਬੋਲੇ ਪਵਣ। ਪਵਣ ਨਾ ਹੋਏ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਚ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਪਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਪਵਨ ਕਰਕੇ। ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ ਬੋਲੇ ਪਵਨ, ਬੋਲਣ ਹਾਰ ਪਰਮ ਗੁਰ ਇਹ। ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਐਸਾ ਬੋਲਿਆ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾ ਬੇਗਾਨਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਛ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਐਸੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਬੋਲ, ਇੱਕ ਬੋਲ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਐਸਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੜਪਦਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੜਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਕੂਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਖੇਡ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੋਲਾਂ ਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਲਚਲ ਬੋਲਚਾਲ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਬੋਲਚਾਲ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਗੂੜੇ ਹੋਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪਵਨ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਪਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੀ ਰਸਨਾ ਜਤ ਸਕਦੀ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲਣ, ਪਵਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਵਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਐਸਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਕੁਛ ਹੈ ਐਸਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। कुछ है ऐसा बोलना संसार नाल संबंध जुड़ता है, परिवार नाल संबंध जुड़ता है। जिड़े बोल परिवार नाल संबंध जोड़ते हैं, संसार नाल संबंध जोड़ते हैं, उन्होंने कहने शब्द। जिड़े बोल परमात्मा नाल संबंध जोड़ते हैं, उन्होंने कहने गुर शब्द। रोशनी नाल भरे हुए शब्द ने, चानने नाल भरे हुए शब्द ने। खैर संक्षेप विच मैं अर्ज करा, मनुख 90% प्रगट भी बोलना तो होता है, ता मर्द सुखन ना गुफ्ता बाशद ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। जिन्ने चिर तक मनुख बोले ना, गुण औगुणा का पता ही नहीं चलता। क्रोधी है कि शांतमयी है, कि जल्दबाज है कि धीरजमान है, मूर्ख है कि सियाणा है, धार्मिक है कि अधार्मिक है, सत्संगी है कि कुसंगी है, बोल दस दें। हाथों तो कुछ नहीं पता चलता, पैरों तो कुछ नहीं पता चलता, मुंह मथे तो भी कुछ नहीं पता चलता, बोलना तो पता चलता है। ता मर्द सुखन ना गुफ्ता बाशद ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। जिन्ने चिर तक बंदा बोले ना, कख नहीं पता चलता। कुछ ऐसा बोलना है जिदे च परमात्मा है, कुछ ऐसा बोलना है जिदे च लोभ है, कुछ ऐसा बोलना है जिदे च अहंकार है, कुछ ऐसा बोलना है जिदे च निरंकार है। तो इस तरह के बिखड़े शब्द जिन्हां दे अर्थ करन लगिया मनुख धोखा खा सकदा सी, भुलेखा खा सकदा सी, भाई गुरदास कोल ले। इस वास्ते भाई गुरदास जी की बाणी नूं आख्या गया कुंजी, इहदे ताले नूं खोल दे, शब्दां नूं खोल दे। इत्थे आखो शरीर की गल, शरीर की गल नहीं। महाराज कहिंदे ने अखां कोई नहीं, कन कोई नहीं, जबान कोई नहीं, पैर भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं टुंडे, पैर भी कोई नहीं लंगड़े, जबान भी कोई नहीं गूंगे, कन भी कोई नहीं बहरे, अखां भी कोई नहीं अंधे। इत्थे सारी अंग भंग हो गए। भाई गुरदास जी ध्यान नाल सुनना, भाई साहब कहिंदे ने देखबे को ना दृष्ट, ना दर्श दिखाए बे को, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए। हे गुरु तैनू देख सका, मेरे को अखां कोई नहीं। ते जिहड़ियां अखां हैगियां ने इहदे नाल तू दिखाई नहीं देंदा। भाई गुरदास, देखबे को ना दृष्ट, ना दर्श दिखाए बे को, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाई। कहबे को ना सुरत, ना सर्वन सुनबे को, कैसे प्रिय निद्र गुण सुनिए सुनाई। हे गुरु तेरे तक मैं बोल पुचा सका, जबानी कोई नहीं, और तेरे बोल मैं सुन सका, मेरे को कान नहीं कोई नहीं। भाई गुरदास, कहबे को ना सुरत, ना सर्वन सुनबे को, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए। मन में गुरमत, गुरमत में न मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवल आइए। अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, कैसे बो नायक की नायका कहाइए। भाई साहब भाई गुरदास, मन में गुरमत, गुरमत में न मन, जो गुरु दी मत है ये मेरा मन कबूल नहीं करता, जो गुरु दी समझ है ये मेरा मन कबूल नहीं करेगा, जो गुरु दे विचार ने ये मैनू कबूल नहीं, ते जो मेरे विचार ने गुरु नू कबूल नहीं। ध्यान नाल सुनने वाली, जो मेरी सोचनी है गुरु नू परवान नहीं, गुरु कहिंदा ठीक नहीं है, ते जो गुरु दी सोचनी है मैनू परवान नहीं। मैं अक्सर अर्ज करता हूं ना, मत्था टेकण दा मतलब इन्ना ही है, गुरु मैं अपने विचार इत्थे रखदा, गल खत्म, मैं अपना विचारां दे मुताबिक जी के देख लिया, सिवाय दुख तो मेरे पल्ले होर कुछ नहीं पिया, सिवाय विपतावां तो मेरे पल्ले होर कुछ नहीं पिया। और सही है, ऐ गुरु मैं अपने विचार इत्थे रखदा, तू अपने विचार मैनूं दे। और गुरु कहिंदा भी है, गुरु की मत तो ले आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। भगती ते गुरु दी मत नाल होएगी, मेरी मत नाल नहीं हो सकती। कहिंदे ने मनुख नूं अपने शरीर नाल, धन संपदा नाल, परिवार नाल भी इतना प्यार नहीं होंदा जितना अपने विचारां नाल प्यार है। अपने विचारां नाल मोवे मनुख कह भी देंदा है इन्हें मेरे विचारां नूं सट मारी। जिस्म नूं सट लग जाए शायद बर्दाश्त कर लवे,

रही भी है तो सारी गवा के आ गए। सतना का मतहीन असना का व्यवहार ना पावे रही कि इसे वास्ते थानू ये शेर चेते होवेगा। शेख सादी साहब ने कहा है दर जवानी तौबा करदन सीरत पैगंबर वक्ते पीरी गुरगे जालम में शब्द परहेजगार। जिड़ा जवानी दे गुनाह तो तौबा करे शेख सादी साहब कहते सीरत ते पैगंबर जैसी है। पैगंबर जवानी ते गुनाह तो तौबा जवानी ते शील ते संजम जवानी ते अपने आप ते काबू यदि सीरत ते पैगंबर जैसी है। पर बुढ़ा हो गया तो कहता मैं गुनाहां दा त्यागी ये फकीर कहता मैं नहीं मनता। वक्त पीरी गुरगे जालम में शवर परहेज क्यों नहीं मन दे दलील देती है एक बुढ़ा बगयाड़ अगर ये आखे ऐ पेड़ो ऐ बकरियो तुसी मैं थो डरो ना मैं थानू पकड़ना छोड़ देता है। पकड़ना नहीं छोड़िया उसको पकड़िया नहीं जाती गलते नहीं। बुढ़ा बंदा कहता है मैं गुनाहां दा त्याग किया है कतई नहीं गुनाह ही उसका त्याग करके चले गए। गुनाह ने बैठना सी अखां दे रसना दे कन्ना दे हाथां च पैरां इति सारियां कुर्सियां टुटियां पियां बेचारे गुनाह किथे बैठा केड़ी थां ते बैठा कहिंदा मैं गुनाहां दा त्यागी कतई नहीं। वक्ते पीरी गुरगे जालम में शब्द परहेज भाई साहब कहने मन में गुरमत गुरमत में ना मन जो गुरु दी मत है वो मेरा मन कबूल नहीं करता और जो मेरी मत है वो गुरु नहीं कबूल करता। जो मेरी सोचनी है ये गुरु नु परवान नहीं है और जो गुरु दी सोचनी वो मैनू कबूल नहीं। मन में गुरमत गुरमत में ना मन नेचल होए कैसे उन मन लेवल आई है अंग अंग भंग रंग रूप कुलहीन दीन कैसे बो नायक की नायिका का आई है। अंग अंग टूटे आया है पैर भी कोई नहीं हाथ भी कोई नहीं अखां भी कोई नहीं कन भी कोई नहीं जबान भी कोई नहीं। इस वास्ते है मैं अर्ज करदा हूं सारे ज्ञान इंद्रे ते कर्म इंद्रे ना होन ते पत्थर ते बंदे विच फर्क ही है। पत्थर वेख नहीं सकता सुन नहीं सकता पत्थर बोल नहीं सकता पत्थर चल नहीं सकता पत्थर कुछ कर नहीं सकता। अगर मनुख परमात्मा नु वेख नहीं सकता सुन नहीं सकता परमात्मा नाल बोल नहीं सकता अपने बोल पुछा नहीं सकता इहदी सुरत चली नहीं परमात्मा दे मार्ग ते कि कम से कम धार्मिक तल ते बंदा पत्थर ही और की। मैं दो शब्दों वास्ते माफी मंग लवा बड़े बड़े इकट्ठ धार्मिक सम्मेलन में देखे ने कोई एक अद मनुख बैठा होवे कोई दो चार बैठे होन औखे ना होना पत्थर बैठे दिखाई दे। इतनी असलियत पहले कंठ तो आई सी मैं थले की थी सी पर हुण इतना उछाल आ गया आउट ऑफ कंट्रोल हो गए मैं कह बैठा पत्थर। सुल्तानपुर दे नवाब ने गुरु नानक नु कहा सुने तुसी कहंदे हो अल्लाह ते राम इक्को ही है। सतगुरु कहण लगे केड़ी शक दी गल इक्को ही ने ते चलो साडे नाल नमाज पढ़ो फिर चलो। महाराज कहण लगे चल हुणे ही चल ईशा दी नमाज पढ़दे आ चल वक्त हो गया। इतनी उम्मीद नवाब नु भी नहीं सी चल पैण चल पै सारे सुल्तानपुर दे खबर पहुंच गई बाबा नमाज पढ़न लई जा रहा है नवाब दी मस्जिद और नवाब दे नाल जा रहा है। बहुत सारियां नूं चिंता हुई बाबे ने मजहब बदल लिया बेबे नानकी मुस्कुरांदी रही। कहिंदे ने कृष्ण दी पहली भगतनी जिसका पूरा अटल विश्वास सी वो द्रौपदी सी जिन्हें श्रद्धा लैंदे जिन्हें मोहम्मद साहब से सब तो पहले श्रद्धा लैंदी वो खदीजा से उन्होंने पत्नी सी। जिसने सब तो पहले गुरु नानक से श्रद्धा लैंदी वो बेबे नानकी सी। इतों सिखी चली खदीजा तो इस्लाम चलिया जे किधरे उसकी पत्नी इनकार कर दें इस्लाम नहीं बदलना से यह भी मैं अर्ज कर दिया।
उन्हें कबूल कर लिया। मोहम्मद